हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक सम्मत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। अब इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। इसके ठीक बाद विविध भारती के कार्यक्रम वंदन वार।

के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख

0: बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर उपलब्ध है और इसके अलावा एंड्रॉयड और iOS पर हमारा एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसका नाम है न्यूज ऑन AIR। इसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दिन रात लगातार ले सकते हैं और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में।
3: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये था चिंतन, अब भक्ति संकीर्तन।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे बोले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम ही राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने बने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विकी कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2:15 पर। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय

निकालकर प्रस्तुत की जा रही है। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

आप सुन रहे थे विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम,
0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंपकर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण दीनी चदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागी लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस

0: कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आज की इस कड़ी में अनूप जी, कबीर की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए, किस रचना, या यूं कहें कि जो हमें पसंद है, आज उसकी चर्चा करें। चदरिया झीनी रे झीनी।
1: चदरिया झीनी रे झीनी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेके आगे। ये भजन यूं तो राग देश पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है। और वो रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन नहीं थे, वो इस ओर आकर्षित हो गए और शास्त्रीय संगीत सुनने लगे। क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों के कराते हैं, उससे उनका जी नहीं भरता और वो कहते हैं इसको और गाइए। इस तरह से शास्त्रीय संगीत की ओर लोग आकर्षित हुए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज रंगरेज है गुरु, गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: वाह, बहुत सुंदर। बहुत बार सुना है ये भजन, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की छटा देखने को मिली। आप अनूप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुंचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं है। राग का मतलब है कि किसी चीज को और सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो एक राग बन जाती है। यूं ही लोगों को डरा दिया गया है कि यह क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो।

0: तो इसका आनंद दुगना हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं उस गाने को आप ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे अगर आपको पता लग जाए कि किस राग में है। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ हो रहा होगा, और वैसे भी संगीत सरिता एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए। कलम और कागज लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं, और हम भी कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी लागी लगन, भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम यूनुस खान है।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ।
0: क्या आप इन आवाजों को पहचान गए? इन आवाज

बुले बिसरे गीत कार्यक्रम की ये पहली पेशकश थी। केदार शर्मा के बोल थे, रोशन की तर्ज, और ये आवाज गीता रॉय और मुकेश की थी। बावरे नैन फिल्म सन 1950 में आई थी, जिसका गीत इस वक्त हमने आपको सुनवाया। बुले बिसरे गीत कार्यक्रम में कुछ ऐसे गाने जो गुजरे दौर के गाने हैं और चमकते हुए सितारे हैं, पर उनकी चमक शायद आज के इस फॉरवर्ड जमाने में थोड़ी धुंधली पड़ गई है।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के 7:11:40 हो चुके हैं और ये गाना गूंज रहा है। ये मासूम सी आवाज अमित गांगुली की, फिल्म का नाम दूर कराही, गीत ए इरशाद, संगीत किशोर कुमार।
1: मैं एक पंछी मतवाला रे मतवाला।

अमित कुमार की आवाज थी। दूर का राही फिल्म का ये गाना इरशाद का लिखा हुआ था और संगीत किशोर कुमार का था। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, और अब हम एक गीत सुनवा रहे हैं जो आपको एक दूसरे गीत की याद दिलाएगा। बनारसी ठग फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, संगीत इकबाल कुरैशी का है। दिलचस्प बात यह है कि ये धुन किसी और ही गाने की याद भी दिलाती है।

बनारसी ढक फिल्म का ये गाना किसी और ही गाने की याद दिलाता है और इसे हम एक पहेली की तरह ही छोड़ देते हैं। आपको जरूर वो गाना याद आ गया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशोर कुमार की आवाज अब गूंज रही है, फिल्म का नाम मुनीम जी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना है ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश गीत और आई की आवाज मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सचिन के तरफ से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से।

अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू।

सुविचार के उपरांत अब आइए एक नजर डालते हैं आज की इतिहास के ऊपर। आज 16 मई है। आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो सन 1975

ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो वहीं सन 1929 ईस्वी में हॉलीवुड में पहली एकेडमी अवार्ड दिए गए, तो वहीं सन 1976 ईस्वी में अटल बिहारी 1996 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और सन 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा के नतीजे में एनडीए की जीत हुई और प्रचंड बहुमत हासिल की।

और अब बात करते हैं सन 1866 ईस्वी में, जहां की 5 सेट का सिक्का प्रचलन में पहली बार आया था। और सन 2013 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने में सफलता मिली थी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और सन 2010 ईस्वी में वेस्ट इंडीज में आयोजित 2020 विश्व कप के निर्णायक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज ने अपने 3 विकेट हासिल खोकर पहली बार विश्व विजेता बना।

और अब श्रोताओं जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों के बारे में। तो सन 1903 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था भीमबर देवरी का, जो कि असम की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। तो वहीं आज अवतरण दिवस है नटवर सिंह का, जिनका जन्म आज ही के दिन 16 मई 1931 ईस्वी में हुई थी। वे भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर लेखक थे। इसके बाद सन 1988 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध अभिनेता विक्की कौशल का भी आज जन्मदिवस है। साथ ही साथ आज जन्म हम मना रहे हैं सोनल सिंह का, जिनका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ था। वे भारतीय अभिनेत्री एवं मॉडल थी। सन 1986 ईस्वी में शक्ति अरोड़ा का जन्म हुआ, जो कि भारतीय टेलीविजन के मशहूर अभिनेता थे। और सन 1926 ईस्वी की बात करें तो मणिक वर्मा का जन्मदिवस है आज, जो कि एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे।

और अब श्रोताओं जान लेते हैं आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले लोग। तो सन 2025 ईस्वी में मनोज कुमार ने दुनिया को अलविदा कहा, तो वहीं सन 2025 ईस्वी में ही शेफाली जरीवाला का ने दुनिया को अलविदा कहा, और सन 2026 में ऋषभ दत्ता जो कि एक मशहूर अदाकारा थी उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। और आज के दिन मनाए जाने वाले दिवस की बात करें तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। यह दिन लेजर के बदले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। साथ ही एक साथ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य माना था, जिसके कारण सिक्किम राज्य दिवस के रूप में भी आज का दिन ये हम मनाते हैं। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक के गतिविधियों पर। फिलहाल सुनवाते हैं कार्यक्रम में पहला गीत।

और इस गीत को सुनने के बाद अब चलिए जानते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। जिला प्रशासन रोहतास द्वारा जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना किसान रजिस्ट्री पंजीकरण कराएं, ताकि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से प्राप्त कर सकें। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि किसान रजिस्ट्री व्यवस्था किसानों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने की दिशा में एक नई महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को उर्वरक, फसल अधिप्राप्ति, फसल बीमा, कृषि ऋण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री होने से किसानों को उर्वरक खरीद प्रक्रिया में काफी सुविधा होगी। किसान अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खाद बुकिंग कर सकेंगे तथा क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के जरिए अधिकृत दुकानों से आसानी से उर्वरक प्राप्त कर पाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकृत किसानों को पीएम किसान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और शीघ्रता से प्राप्त होगा।

जिले में इंटर नामांकन को लेकर जारी पहली मेरिट लिस्ट के तहत नामांकन नहीं लेने वाले छात्र छात्राओं का दावा रद्द कर दिया जाएगा। यह निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर 12 मई तक नामांकन लेने का मौका दिया गया था। बोर्ड ने छात्रहित में 18 मई तक का तिथि का विस्तार किया है। छात्र छात्राओं को निर्देश दिया गया है कि इस अवधि में अगर नामांकन नहीं लिया गया तो दूसरे छात्रों को यह सीट आवंटित कर दी जाएगी। ऐसे छात्रों का नाम पोर्टल से हट जाएगा और उनकी सीट रिक्त हो जाएगी। प्लस टू स्कूल और इंटर कॉलेज में भी जिन छात्रों का नाम पोर्टल पर अपडेट नहीं करेंगे तो दूसरे छात्र को यह सीट आवंटित कर पोर्टल पर डाल दी जाएगी।

रोहतास जिला के एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज कल यानी कि शुक्रवार को जिला मुख्यालय सासाराम के एसपी जैन महाविद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला सहकारिता पदाधिकारी नमन प्रकाश ने गुब्बारा उड़ाकर तथा खिलाड़ियों के द्वारा मार्च पास्ट की सलामी लेकर तथा मशाल जलाकर किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में एसपी जैन महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राजेश कुमार सिन्हा, जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार राय, जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह सहित कई उपस्थित रहे। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विनय कृष्ण ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों के विद्यालयों से लगभग 500 बालक और बालिका एथलीट में विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष सरोहतास जिला एथलेटिक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। सर्वप्रथम जिला एथलेटिक संघ के संयुक्त सचिव कुश कुमार त्रिपाठी एवं सत्येंद्र कुमार ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत बुके कर किया। जिला एथलेटिक संघ के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। प्रतियोगिता की पहली स्पर्धा बालकों के अंडर 16 आयु वर्ग के 600 मीटर दौड़ की स्पर्धा से आरंभ किया गया। इसमें श्री कृष्णा क्लब चितौली के सनी कुमार ने प्रथम, जबकि केंद्रीय विद्यालय सासाराम के धीरज कुमार ने द्वितीय स्थान और अकोड़ी गोला के पवन कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में जोगाडी की आराध्या राज ने प्रथम स्थान, जबकि मध्य विद्यालय शिवपुर की चांदनी कुमारी ने द्वितीय स्थान और गांधी स्मारक और उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपोखरी की ज्योति कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

आमतौर पर टीबी की पहचान किसी भी व्यक्ति को 15 दिन या इससे अधिक समय तक खांसी रहना माना जाता है। टीबी सिर्फ खांसी से पहचानी नहीं जा सकती, यह भी संभव नहीं है क्योंकि 20 से 25 फीसदी लोगों को एक्स्ट्रा फल्मिनरी टीबी होती है। इन्हीं में एक है पेल्विक टीबी, जिसके संक्रमण से कई बार महिलाओं को मां बनने के सुख से वंचित होना पड़ता है। टीबी का संक्रमण जब शरीर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है तब जेनेटिल या फिर फ्लेविक टीबी हो जाता है, जो महिलाओं एवं पुरुषों दोनों में निसंतता का कारण बन सकता है।

सरगर्मी और लू से निपटने के लिए कैमूर जिला प्रशासन मुस्तैद है। पेयजल और पशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आपदा विभाग से संबंधित या जिले में लू की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और पशु संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के विभिन्न निकायों भभुआ, मोहनिया, कुदरा, हाटा, रामगढ़ में अब तक कुल 136 जगहों पर पियाऊ केंद्रों की व्यवस्था की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिले में खराब पड़े 1000 से अधिक चापाकलों की मरम्मत की जा चुकी है और 29 टैंकरों के माध्यम से जिला जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

कैमूर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार आज अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 29 अधिकारियों ने 69 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 55 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां 84 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो श्रोताओं, ये थे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, और अब सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

और अब श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद चलिए एक नजर डालते हैं समाचार पत्रों के सुर्खियों पर। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और हिंदुस्तान। दैनिक भास्कर अपने हवाले से लिखता है कि नीट दोबारा परीक्षा 21 जून को, एनटीए अफसर भी जांच के घेरे में, और विधानसभा में चौरसिया परिषद में संजय सिंह का मुख्य सचेतक बने, और पटना में पेट्रोल 3.44 रुपया और डीजल 3.13 रुपया महंगा, यह 4 साल में सबसे ज्यादा महंगा है, और आ रहा है मानसून बिहार में, जून के दूसरे हफ्ते में देगा दस्तक, और पटना में एसएसपी नगर में व्यवस्था का पद, स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक के लिए 485 पद के लिए आवेदन।

प्रभात खबर की सुर्खियां है 10,468 दरोगा की होगी भर्ती, विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, प्रमोशन से भरे जाएंगे सारे पद, और गोपालगंज में नोट दुगना करने वाले गिरोह का बंडाफोड़, 1 करोड़ रुपए के साथ 8 धराएं।

दैनिक जागरण अपने पहले पेज पर लिखता है कि निजी स्कूलों में री एडमिशन शुल्क पर रोक, राज्य सरकार का फैसला, आदेश नहीं मानने पर विद्यालयों की रद्द होगी मान्यता, और पेट्रोल डीजल में 3 से अधिक सीएनजी में 1 रुपए की वृद्धि की गई, और साथ ही साथ 1 से 15 जून तक पटना और आरा में होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा।

हिंदुस्तान अपने पहले पेज पर लिखता है कि शिक्षा समेत 9 विभागों के सचिव बदले और थार भोजशाला मस्जिद वागदेवी का मंदिर हाईकोर्ट और नीट यूजी अब 21 जून को अगले साल से ऑनलाइन किया जाएगा।

41 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। तेज धूप निकलेगी, आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना है। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो अपने रेडियो दोस्त सचिन को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान

0: ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

0: यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सिदेव फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही

है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा, अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है, सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास से प्रशंसा

0: बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम।

महालक्ष्मी अय्यर के गाए इसी गीत के साथ ही देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज से फिल्म पत्थर के सनम। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश से हम तक पहुंची है। आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, बी के सूर गनया और आप हैं लल्लू पंडित। और आप हमारे श्रोता हैं ब्रह्मपुरा मनीगांछी से भाई अच्छेलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। और आप हमारे श्रोता हैं नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल मौसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम मिश्रा तकरम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, नवाजा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजब्बिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अभिया नाज, साजिया शाही नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। आप हमारे श्रोता हैं कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख और अनुजा जहानाज, शेख टोली समस्तीपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसरत जहानाज। तो लीजिए सुनिए आपके फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अनजान के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत है, फिल्म आज का अर्जुन। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आशिफ खान, बेगम निगहत परवीन, सदफ आरजू, शाहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा परवीन और बेबी अलीशा। और आप हमारे श्रोता हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, आप हैं बिहारी कॉलोनी लेनी से परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी वल्ली डोम और कुमारी डब्लू डोम, आप हैं जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार। और आप हमारे श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारे राई कारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और आप हैं ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी जी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अब लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में खिलौना फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश से जो हम तक पहुंची है, आप हैं थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। और आप हमारे श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से शारदानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और आप हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगाजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार,

कुमार, और आप हैं रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा, आप सब हैं नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और आशुतोष कुमार। आप हमारे श्रोता हैं मोहल्ला निवेरिया सासाराम से, अनिल गुप्ता और मंजू गुप्ता। आप हैं

और अब हमारे श्रोता हैं लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, रिंगणी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा जी, लेवई से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, और अब हमारे श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा।

और आप हमारे श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में खिलौना फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

मोहम्मद रफी के गाए इसी गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभवाणी,
3: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रूपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो तो विद्यालय सुसंगत प्रावधानों के तहत ही ऐसा करेंगे। उन्होंने अन्य प्रतिबंधित शुल्कों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। निजी विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालय के सूचना पट और वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म का पैटर्न बार बार नहीं बदलेंगे। आवश्यकता होने पर विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षक अभिभावक संघ से इसकी अनुमति लेनी होगी। अभिभावक सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से पुस्तकों और पठन पाठन सामग्री खरीद सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा को शुल्क बकाया रहने की स्थिति में कक्षा परीक्षा अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इसके तहत विभाग के 100 दिनों के कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि TRE4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्यों के साथ अध्यापन की अनिवार्यता पर विचार करने की भी बात कही। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पटना स्थित विभागीय कमांड कंट्रोल सेंटर से वैशाली और अररिया जिला अस्पताल की ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग की। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर चल रहे इलाज का फीडबैक लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सुविधाओं की जानकारी नियमित रूप से देने और शिकायत तथा सुझाव के लिए IT आधारित फीडबैक व्यवस्था विकसित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित समय से पहले तैयारी करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्यों में तेजी लाने, तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने और बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुखाड़ वाले इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान में प्राप्त सभी आवेदनों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने 31 मई तक प्राप्त सभी आवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही श्री जायसवाल ने एग्री स्टैक अभियान को देखते हुए 6,60,000 जमाबंदियों में सुधार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों को बिहार कृषि ऐप से हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही मगही, भोजपुरी, अंगिका और बच्चिका में भी खेती की जानकारी

0: जानकारी मिलेगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। श्री सिन्हा ने बताया कि ऐप पर इस साल के अंत तक 80 लाख किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। राज्य के सभी सरकारी विभागों में किराए पर चलने वाले डीजल पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले को अमल में लाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में नए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को पटना और नालंदा तथा विजेंद्र प्रसाद यादव को सारण जिले का प्रभारी बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को पूर्वी चंपारण और शिवहर, जबकि कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को गया जी और गोपालगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 20 सूत्रीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में संबंधित मंत्री अपने आवंटित जिले में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की पत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्री चौधरी ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि कृष्ण भूषण कुमार की पिछले दिनों अपराधियों ने कार्यालय कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि प्रसाद भुयाल और टेक प्रसाद की पीठ ने इस आशय का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल से 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लागू कर दी थी। इसके विरोध में सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द ही नई नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों का सृजन किया है। गृह विभाग के अनुसार सबसे अधिक 27,510 सिपाही और समकक्ष पदों पर बहाली होगी। वहीं दारोगा के 20,937 पद हैं, इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 10,468 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत आर्मी भर्ती कार्यालय दानापुर ने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा पटना और आरा में आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, सीवान और सारण जिले के लगभग 48,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न

0: लीक मामले में मुख्य आरोपी पीबी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के अमृतसर स्थित खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे बिहार के छात्रों पर आपराधिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। घटना को लेकर 300 छात्रों ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
1: दिनांक 16 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर आज सुबह मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज श्रद्धापूर्वक वट सावित्री पूजा की जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पटना की एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के दोषी अब्दुल करीम, चंदन यादव और प्रवेश कुमार को 13-13 साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव से पुलिस ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 95 लाख रुपए के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को बांका जिले के पंजवारा से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर एसएसपी और इमिग्रेशन विभाग की टीम ने एक सोमालियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अहमद फराह के रूप में हुई है, जो बिना वैध कागजात के सीमा पार नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिया जिले की मरंगा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 91 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 585 लीटर शराब के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। शिवहर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए से अधिक बढ़े। दैनिक जागरण लिखता है, निजी स्कूलों में भी एडमिशन शुल्क पर रोक। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को, अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित एग्जाम। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पीएम मोदी की मेगा डील, यूएई से 48,000 करोड़ निवेश, एलपीजी करार भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई सीनियर आईएएस अफसर का तबादला। आज अखबार लिखता है, सूबे में अब मध्यमा की भी होगी पूरक परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर करिया अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार

0: के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रूपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रातः के 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मलिका। 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से सुनेंगे आप कार्यक्रम आज के फनकार। हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं पूर्वाहन 10 बजे, और 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।

पूर्वाहन 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और 10:30 पर आप सुनेंगे, माफ कीजिएगा, 10:45 पर आप सुनेंगे गैर भोजपुरी गीतों का कार्यक्रम रसधार, और 11:00 हम आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से विविध भारती केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम

शाम की सभा की शुरुआत होगी 5:10 पर वंदन कार्यक्रम से और 5:30 पर आप सुनेंगे हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। आज की इस कार्यक्रम में हमारी बातें होंगी शांति से ही आती है समृद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी से बदलती है दुनिया। योजना भव्य योजना के बारे में जानेंगे और कार्यक्रम के बीच बीच में आप फिल्मी गीतों का भी लुत्फ उठाएंगे। शाम 6:00 आप सुन सकते हैं किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी और 6:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। हमारा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का अंचल आप सुन सकते हैं 7:00 और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार तत्पश्चात जिले की हलचल और आपके फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद आप सुनेंगे 7:50 पर।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों का कार्यक्रम महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग, और 10:30 पर रात्रि हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मल्लिका।

0: कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और बगला मेहता की आवाजों में अभी आपने सुना था हल्का फिल्म का ये गीत। संतोष आनंद के बोल थे और अनु मल्लिक का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में मेरी जंग फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये गीत आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में अभी आपने सुना मेरी जंग फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब इसी के साथ कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम के

गीतों से सजा रंगारंग कार्यक्रम आयोजन स्थल ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: इसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कोई बोल दीजिए बस, सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। आराम मखमल के कटेलों में और खेलों में सरे दरबार खिदमत में हाथ बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई कथा चमर होगा। बुलंद होगी डायरेक्टर साहब ने मुझे कहने बरफूरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल

शूटिंग हो रही है। उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनेयर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे।

एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे।

इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए काम कर रहे थे। अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक उबाल आया। उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी पिता से कहा कि वो सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अब ये चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी यूनिट में विकी कौशल बतौर

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर वन न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। निर्देशक नीरज घायवान को मौका दिया जिसने बनाई फिल्म रुपहले पर्दे पर हीरो आए। एक ऑफबीट

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना। इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मैं।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है।

नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। स्वर एवं लाल बहादुर दुबे, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सासाराम प्रखंड क्षेत्र के मोकर ग्राम पंचायत स्थित रामगढ़ के बारे में। सासाराम प्रखंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में अग्रेर के पास रामगढ़ गांव स्थित है। यह गांव ग्राम पंचायत मोकर के अंतर्गत आता है। गांव में नाली और गली अच्छी अवस्था में देखने को नहीं हमें मिली। बिजली के पोल पर कवर्ड तार जरूर दिखे। गांव के पास ही एक प्राथमिक विद्यालय है जो अग्रेर प्राथमिक विद्यालय के नाम से अवस्थित है। सासाराम आरा रोड के बगल में पश्चिम तरफ रामगढ़ गांव स्थित है। लगभग 100 घरों की बस्ती में अधिकांश लोग मजदूरी एवं कृषि कार्य करते हैं। श्रोताओं, ये तो रही रामगढ़ की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है? नाली, गली, पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा के बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है? सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है? इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया ग्राम रामगढ़ के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित रामगढ़ में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम रामगढ़ में उपस्थित हैं और हमारे साथ रामगढ़ के कुछ ग्रामीण हैं। आइए जानते हैं गांव में विकास की क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है। तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
1: अनिल कुमार चौधरी।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: रामगढ़
0: पंचायत
1: मुकर।
0: अच्छा, ये बताइए आपका ये जो रामगढ़ गांव है ये कितने घरों की बस्ती है?
1: 60-70 घर।
0: ये बताइए गांव में विकास की क्या स्थिति है आज से कुछ वर्ष पहले और आज देखते हैं कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है?
1: अभी तो ठीक लग रहा है। साढ़ आएगा ना जर्जर स्थिति हो जाता है यहाँ से एकदम वहाँ रोड तक।
0: गली और नाली?
1: गली नाली दोनों जर्जर स्थिति में।
0: अभी तो जो हम लोग खड़ा है यहाँ तो पता है
1: यहाँ पर ठीक है, लेकिन वहाँ ट्रैक्टर से आगे जो है ना वहाँ से एकदम जर्जर स्थिति हो जाता है, इतना कचरा में जाना पड़ता है।
0: पूरे गांव में नहीं बनी हुई है ये?
1: ना ना, पूरे गांव में नहीं है।
0: नाली की स्थिति?
1: अभी देखिए इधर भी यही सब बाकी है
0: जी। और नाली की स्थिति?
1: नालियों का स्थिति देखिए रहे हैं यहाँ से वहाँ तक कुछ ठीक है ही, फिर ओकर बाद में।
0: और सफाई के भी कमी हम देख रहे हैं।
1: पानी का भी हम लोग का भी नहीं रहता है सब।
0: पानी का निकास भी नहीं है?
1: ना, निकास भी
0: कहाँ जाता है पानी आपका? नाली
1: पानी ऐसे ही जाता है।

0: खेत में दूसर दूसर आदमी के अगर साफ हो जाता है ना करहा तो चल जाता है पुल में चाट में दूसरे खेत में जाता है।
1: अभी गर्मी का मौसम है, पानी की सुविधा है कि नहीं? नल जल योजना हर जगह शुरू की गई थी
0: ना, यहाँ पर इन साल बन रहा है।
1: अच्छा, बन रहा है अभी?
0: हाँ।
1: अभी पहले से नहीं था?
0: हाँ, वहाँ पर गलाया हुआ है, गला के गया है, अभी मशीन वशीन सब नहीं बैठा है।
1: अच्छा, गाँव में बिजली की क्या स्थिति रहती है आपके?
0: बिजली का स्थिति ठीक है, कभी कभी कट जाता है।
1: अच्छा, सरकार की तरफ से छूट मिल रही है, वो आपको मिल रहा है?
0: हाँ हाँ, मिल रहा है।
1: यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय?
0: विद्यालय यही है यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय अग्रेर के नाम से जाना जाता है।
1: जो आपका मेन फ्रंट पर है, जो सामने है। आंगनबाड़ी है कि नहीं आपके गांव में?
0: ना, आंगनबाड़ी नहीं है।
1: आप लोग ज्यादातर काम क्या करते हैं, मतलब यहाँ रहने वाले लोग क्या करते हैं?
0: किसानी करते हैं, किसान खेती होती।
1: ये तो कुछ विकास की बातें रही, बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है?
0: ना।
1: राशन कार्ड बनवाए हैं कि नहीं?
0: तो मिला है, मिल रहा है।
1: अच्छा, तो राशन मिल रही है। राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए हैं?
0: हाँ, बना है।
1: कॉलोनी के भी कुछ लोग यहाँ पर पात्र हैं?
0: कॉलोनी अगला साल में मिला था, लेकिन अब की बार में नहीं मिला है।
1: आप पात्र हैं कि नहीं कॉलोनी के? आपको मिला है कि नहीं?
0: नहीं मिला है।
1: अच्छा, आपको नहीं मिली है? और इसके अलावा भी कुछ सरकार की योजनाएं हैं, जिसके पास खेत है उसके लिए कृषि सम्मान निधि योजना मिलती है, दो दो हजार रूपए तीन बार आते हैं साल में?
0: ना, हाँ, मिलता है,
1: मिलता है आपको जी। घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं?
0: ना।
1: वृद्धा पेंशन योजना का लाभ?
0: वृद्धा पेंशन का चाची है।
1: अच्छा, आपकी चाची है, मिलता है ना।
0: हाँ।
1: क्या कहना चाहेंगे गांव के बारे में?
0: कहना यही चाहेंगे कि हम लोग का रोड गली नली सही ढंग से बन जाना चाहिए,
1: बन जाना चाहिए।
0: हाँ, अभी देखिए वहाँ तक जगह है, सब इसमें माटी डाल के ऐसे ही पक्कीकरण हो जाएगा तो हम लोग का कचरा में नहीं रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, होना चाहिए सब जी। धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम पिंकू चौधरी।
1: रामगढ़ के रहने वाले?
2: रामगढ़ के रहने वाले सर।
1: क्या स्थिति है गांव में अभी?
2: गांव का स्थिति सर ऐसा है कि 50% व्यक्ति का घर का जो पानी नहीं निकल पाता है, 85% का पानी नली में निकलता है। पानी के लेकर मेन समस्या है और गली के लेकर।
1: मतलब कि ये जो गली है ऊंचा है?
2: ना, ऊंचा नहीं है, जो बाहा है उसमें थोड़ा रुकावट है, कुछ लोगों से कुछ लोग गिर दिए हैं, बहने नहीं देना है।
1: यानी कि नाली का पानी है जो आपके गाँव में ही
2: साफ सुथरा से सर नहीं जा पाता,
1: सफाई नहीं हो रही है,
2: वही ओवर कर जाता है पानी और गली में बहने लगता है, जिससे आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। छोटा छोटा बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं।
1: अच्छा, ये गली हर जगह बनी हुई है कि नहीं?
2: नहीं बनी है अभी, बहुत मतलब सब गली है, बाकी मेन गली है गांव का
1: जी,
2: लेकिन और अदर गली है जितना है, सब नहीं बना है।
1: नाली?
2: नाली भी अभी पूरा नहीं बना है, मेन गली में बना है, इधर नहीं बना है, उधर नहीं बना है, सब मतलब अधूरा है।
1: मैंने नाली गली का काम पूरा नहीं हो पाया?
2: नहीं हुआ है बिल्कुल।
1: और बिजली की क्या स्थिति रहती है?
2: बिजली की स्थिति बहुत अच्छा रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी कट जाता है, ठीक ना। वो तो ग्रेड हम लोग के नजदीक में है, मुकरपुल।
1: अच्छा, मुकरपुल के पास। सरकारी जो छूट मिलता है बिजली में, वो मिल रहा है आप लोग?
2: हाँ बिल्कुल मिल रहा है।
1: बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर कैसी सुविधा है?
2: अच्छी सुविधा है, पहले से बहुत डेवलपमेंट कर गया है हम लोग का जो राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय अग्रेर है, हाता मारा गया है, बच्चों को अच्छा से पढ़ाई लिखाई सब होता है, मीटिंग भी लोग कराते हैं यहाँ के टीचर लोग।
1: मतलब कि विद्यालय किसने ठीक?
2: हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है।
1: यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं?
2: हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं।
1: ऐसी नहीं है कि मानसिकता है कि ज्यादातर लोग प्राइवेट में भेजना चाहते हैं?
2: ना ना, ऐसा चीज नहीं है।
1: व्यवस्था बढ़िया है लोग?
2: हाँ व्यवस्था बढ़िया है, टीचर भी बढ़िया है लोग, पहले से बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है।
1: अच्छा, पेयजल के बारे में बताइए, पीने वाला जो पानी उसका क्या?
2: इसका स्थिति सही है हम लोग का, इधर तो कल से ही हम लोग का अच्छा रहता है, लेकिन अभी मतलब जैसे मान लीजिए अभी काम चल रहा है पेयजल का।
1: सरकारी नल जल नहीं चालू?
2: ना नहीं चालू है, शुरू है।
1: सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ उसका लाभ मिलता है?
2: हमें नहीं मिलता है और बहुत सारे लोगों को मिलता है गांव में, जैसे राम बिरिश चौधरी हो गए उधर।
1: क्या मिलता है?
2: वही किसानी वाला जो मिलता है।
1: अच्छा, कृषि सम्मान निधि
2: जो बोले अभी 2000-3000 हम लोग को, वही चीज।
1: अच्छा, इसके अलावा बताइए, राशन कार्ड वालों को?
2: राशन कार्ड वालों को राशन मिलता है सर।
1: आप भी उसके पात्र हैं?
2: हमारे नाम से राशन कार्ड नहीं है, मेरे मम्मी के नाम से था, लेकिन अभी फिलहाल में हम किसान से अपना ऐड किए, रजिस्ट्रेशन किए, तो उसके बाद कट गया।
1: अच्छा, घर में कोई बूढ़े लोग होंगे या जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको पेंशन?
2: बिल्कुल पेंशन मिलता है, मेरी माँ ही है वो जो कि विधवा है, उन्हें पेंशन मिलता है।
1: कॉलोनी के पात्र हैं कि नहीं आप?
2: कॉलोनी के बारे में सर इसका साक्ष्य तो मान लीजिए कितना जमीन रहने पर कितना न रहने पर सरकार तय करती है, इसका हमें जानकारी नहीं है कि इसका हम पात्र है या नहीं है।
1: मिला नहीं ना है कभी?
2: मेरे नाम से अभी कॉलोनी नहीं मिला है।
1: आपके नाम से? आपके घर के परिवार?
2: हाँ, मेरे मम्मी के नाम से मिला है बिल्कुल।
1: अच्छा, मम्मी के नाम से मिला है, चलिए ठीक है। मैंने जिसको कभी मिला है तो भी चीज आना भी चाहिए कि जो मिला है तो।
2: जी सर, जी जी बिल्कुल।
1: तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव को?
2: हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रखंड के जो भी अधिकारी हैं सर, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस रामगढ़ पर थोड़ा ध्यान ध्यान दे, मोकर पंचायत का गांव रामगढ़ है जो कि नली गली के लेकर मेन समस्या है। यहां पर बहुत सारे लड़कों को जो पढ़ने जाते हैं, चाहे हम लोग बाइक से

0: चाहे गाड़ी लाने में, किसी की बेटी बहन आती है, आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। लोग मेन रोड पर ही अपना गाड़ी लगा देते हैं और पैजामा उठाकर चलते हैं असार में, ऐसा स्थिति आ जाता है रामगढ़ के गली का। अदर गांव जो 4 किलोमीटर हट के देहात में है, 5 किलोमीटर हट के है, वहाँ का पक्कीकरण बहुत अच्छा हुआ है रोड का, गली का भी, लेकिन रामगढ़ में 12 गाँव से खराब स्थिति है।
1: आपका आरा सासाराम रोड के एकदम बिल्कुल बगल में?
0: जी सर, जी बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं,
1: इस पर ध्यान देना जरूरी है।
0: बिल्कुल, गली नली ठीक हो जाएगा तो बहुत बेहतर होगा रामगढ़ का भविष्य और सब बढ़िया है।
1: जी धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: गुड्डू कुमार।

0: इस पर ध्यान देना जरूरी है।
1: बिल्कुल, गली नली ठीक हो जाएगा तो बहुत बेहतर होगा, रामगढ़ का भविष्य और सब बढ़िया है।
0: जी धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: गुड्डू कुमार।
0: गुड्डू जी, रहने वाले कहाँ के हैं?
2: रामगढ़।
0: रामगढ़ जो कि मुकर पंचायत में पड़ता है।
2: जी, मुकर पंचायत।
0: ये बताइए गाँव में क्या स्थिति है अभी?
2: बहुत खराब स्थिति है गाँव का, बहुत कठिनाई है नली गली के लेकर। मुखिया वार्ड हम लोगों का ध्यान नहीं देते हैं। मान ली 12 गाँव में हम लोगों का गाँव सबसे कचरा में जा रहा है। न मुखिया आ रहे हैं, न वार्ड आ रहे हैं देखने के लिए गली नली कैसा है।
0: नली दोनों की स्थिति ठीक नहीं है।
2: अब कॉलोनी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
0: अच्छा, आपके घर के लोगों को कुछ मिला हुआ है सरकारी योजनाओं का लाभ?
2: सरकारी योजना बस यही पेंशन मिलता है, राशन मिलता है।
0: जी, पेंशन किसे मिलता है घर में, कौन है?
2: पापा मम्मी को मिलता है, दादी को मिलता है।
0: कॉलोनी भी कभी मिली हुई है?
2: नहीं।
0: गाँव में सबसे ज्यादा आप लोगों की समस्या ये नाली गली को लेकर?
2: जी जी जी,
0: इस पर ध्यान देना चाहिए।
2: मेन गली में भी वही हाल है, मेन गली का भी देखिए रहे हैं एकदम स्थिति क्या है, और पतला पतला गली जो है तो सब बेकार है।
0: जी धन्यवाद। रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम रामगढ़ के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको सुनवाते हैं एक गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इसे हमने लिया है फिल्म दोस्ती से।

0: इस गीत के बाद आइए चलते हैं ग्रामीणों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम रामगढ़ के लोगों से और जान रहे हैं गांव में विकास कार्यों के बारे में। श्रोताओं, एक महिला से मिलते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है गांव की। क्या नाम है आपका?
1: बिमला।
0: कहाँ की रहने वाली हैं?
1: रामगढ़।
0: ये बताइए, गांव में नाली गली की क्या स्थिति है?
1: खराब है ना स्थिति,
0: मतलब नहीं बना है सब जगह?
1: ना, होने लाली बन लाई नहीं, कहे ने बन लाई नहीं, खेल गली देखते बनी
0: नहीं बन पाया पूरे गांव में हर जगह
1: लड़ाई चलता।
0: काहे को लड़ाई चल रही है?
1: का महिला करता उन्होंने कह दी जब बस बहुने।
0: अच्छा, ये बताइए यहाँ गाँव में बिजली की कैसी स्थिति रहती है?
1: ठीक भाई साहब।
0: पीने वाला पानी आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, नल जल का?
1: ना।
0: अच्छा, सरकारी योजना का लाभ आपको कुछ मिलता है?
1: लाभ मिलल बा, जगह मिलल बा,
0: कॉलोनी मिली है?
1: कॉलोनी मिलल बा।
0: तो जो पैसा मिला तो बना लिए हैं ना उसी में?
1: बना लेने। हाँ, बना लेने।
0: अच्छा, उसी में रह रही हैं। और बताइए कि राशन कार्ड है बनवा?
1: हाँ, बनल बा हमारे लड़का के लिए बन।
0: अच्छा, समय से मिल जाता है?
1: हाँ, समय से मिल जाला।
0: मालूम है कि जिसका राशन कार्ड होता है वो आयुष्मान कार्ड भी बनवाता है जिसमें 5 लाख तक के इलाज होते हैं?
1: हाँ, बनल बा।
0: अच्छा, बनवा लिए हैं। घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं जिनका 60 साल? पेंशन योजना का लाभ मिलता है?
1: मिलेगा। हाँ, मिलेगा, हमारे मिलेगा।
0: अच्छा, आपको मिलता है?
1: हाँ।
0: तो मिल ही रही है, मतलब सरकार की तरफ से योजनाएं हैं।
1: हाँ,
0: उसका लाभ ले रहे हैं आप लोग?
1: हाँ, मिल रहे।
0: लेकिन नाली गली वाली समस्या आप लोग सब लोग बता रहे हैं क्या?
1: हाँ, हाँ।
0: जी, धन्यवाद। आइए एक और महिला से मिलते हैं और बातें करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: उषा कुंवर
0: जी। कहाँ की रहने वाली है?
2: रामगढ़।
0: ये बताइए गांव में क्या स्थिति है?
2: हमने के आदमी ठीक भैया भर ले, बाकी हमने के लाली गली एकदम घटिया हो गए,
0: खराब हो गया।
2: हाँ, सब आवा तो हम सही तो ना, कोई लड़की के आवा तो बर बरात वो भी मैंने आके बाजा नाच कुलो नहीं रह जाता है, लड़का फैका पड़े जाए में लिखे में दिक्कत बा, ये सब लड़का हाथ ना बाछी पे गिर जाता है, उसमें पानी लग जाता है बरसात में।
0: जी जी, जब बना नहीं होगा सब खराब है तो निश्चित ही आने में तो दिक्कत होगी ना सभी को?
2: दिक्कत बताबे ना हम कहते नहीं सर।
0: ये बताइए कि मुखिया जी आपके जो है कहाँ के हैं?
2: हमने के मुखिया जी मोकर
0: के। मोकर के? कुछ ध्यान नहीं देते हैं गांव पर?
2: मुश्किल बा, हमने गई थे बनावल, हमने मुखिया जी सलामे न सुनिये, जो हम बात बोलते तो हकीकत बा।
0: जी जी,
2: हमने के बाद मुखिया जी जितले बन कोबर फंड आयल हेजले नापी गोल यहाँ ले कि हेजले बनी आज बनी काल बनी 2 महीना के बाद बनी, कोई सुनवाई नहीं की।
0: अच्छा, यहाँ पर बिजली तो बढ़िया रह रही है ना?
2: बिजली तो बढ़िया, बाकी बिल
0: बिल कहाँ? बिल तो आप लोगों का बहुत कम, 125 यूनिट छूट सरकार दे रही है, माफ है।
2: चिप्स में डाल चिप्स खत्म ताकत है।
0: अच्छा, आप लोगों का मीटर लगा है रिचार्जेबल वाला?
2: कोई कहीं लगल बा, चारा जोड़ा कोई सब लगल बा, तो जो ऐसे लगल बा तो बड़ा बिजली
0: पैसा डालना है तो जलना है।
2: हाँ, नहीं तो काम खत्म बा। तो हमने के सुविधा यह चाहिए कि हमने के चिप्स वाला बिजली बिल ना चाहिए,
0: मतलब जनरल मीटर चाहिए।
2: हाँ, जनरल मीटर चाहिए, ऐसे कि हमने के थोड़ा भले बिल बढ़ जाए डला जी, बाकी अन्हारे रहल ठीक नहीं के।
0: तो अभी यहाँ पर बहुत तो देख रहे हैं कि मीटर जनरल है जो पहले वाला?
2: नहीं, अभी आधा बा।
0: अच्छा, आधा लग गया है जो?
2: हाँ, आधा लग।
0: पानी आप लोगों का जो सरकारी नल जल का तो नहीं ना है यहाँ पर?
2: हमने गाँव में नहीं, सरकार
0: अपने चापा कल का आप लोग पीती
2: है वो पानी टंगा जाता है।
0: गर्मी में दिक्कत हो रही है अभी?
2: गर्मी में तो ढेर आदमी के जगह मटर बब करे नहीं चलत, कोई के मटर चला था अगर हम लाइन भाग जाए हमने के तो हमने के गिलास पानी न मिली, कॉल चलबे न करी।
0: अच्छा, ये बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ मिल रहा है आपको?
2: अरे जौन मिलत रहे हमारे को कोटा तो कोटो बंद हो गई।
0: क्यों, क्या लोग परेशानी कर दिए?
2: अब 2 महीने के लिए बंद हो गया कोटा,
0: नहीं मिल रहा है
2: ना।
0: ये बताइए कॉलोनी भी आपको कभी मिली है?
2: हाँ, कॉलोनी मिलल
0: तो बनवा ली है, मतलब?
2: हाँ, कॉलोनी हमारे बन गई बहुत पहले, एक में कमी नहीं है, जो सरकार हमके लाभ दिले बा तो वो नहीं के। पेंशन भी बा, पेंशन के लाभ भी आज सरकार के हम उठा रहे हैं, उनकर खा रहे भाई
0: जी। चलिए, मिला जुला कर जो योजनाएं हैं तो लगभग मिल रही है, लेकिन गाँव में विकास की कमी है
2: बहुत बहुत। देखिए कोई हित ना तावा तवन तो हमने के मेने गली खराब बा, इतना परेशानी बीतता कि लड़का हाथ में गिर जाए फिर कपड़ा चेंज करे के बा। एक घड़ी तो ठीक बराबर पार हो जब सुखरग में बरसात में आके घरबा देख ली कि अगड़ेर के बगल में रामगढ़ बा, ये टोला गांव के कैसन नतीजा बबुए।
0: जी जी, दिक्कत तो है निश्चित है, जब नहीं बना है तो आने जाने में परेशानी बरसात में होगी, अभी तो गर्मी का दिन है।
2: हाँ, अभी सूखल बैठे तो निकोसू पार हो जाये, बाकी बरसात में 4-5 महीना हमनी के नतीजा हाल में बीत जाए।
0: हम अगर जनप्रतिनिधि सुन रहे हो या जो इससे संबंधित अधिकारी सुन रहे हो तो हम चाहेंगे कि इस गांव पर ध्यान होना चाहिए।
2: हाँ,
0: यहां जो कमी है अगर नाली गली जो समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए। जी धन्यवाद, आइए एक और व्यक्ति से।

0: मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
1: मिस्टर सुभाष कुमार।
0: सुभाष जी, क्या करते हैं आप?
1: अभी पढ़ाई करते हैं। हम
0: इसी गांव के रहने वाले हैं?
1: जी, रामगढ़ के रहने वाले हैं।
0: किस कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं?
1: हम बीएड कर रहे हैं अभी।
0: अच्छा, बीएड कर रहे हैं। आपके गांव में क्या स्थिति है?
1: ये जो गांव है, अप्रैल मई और जून जुलाई तक, मतलब जो सूखा दिख रहा है आपको, सूखा दिख रहा है, बाकी सारे दिनों में यहाँ इतना पानी लगा रहता है गड्ढा में।
0: शिक्षा के मामले में विद्यालय की स्थिति क्या है?
1: विद्यालय के देखिए, रामगढ़ में जो विद्यालय है, जो अगड़ेर के नाम से है, वो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सही है अभी। लेकिन जो हम लोग गाँव की स्थिति है, जो बच्चे जाता है पढ़ने के लिए, वो बहुत गिरावट है इसमें। और जो हम लोग आंगनबाड़ी का जो केंद्र है, यहाँ पर आंगनबाड़ी में कोई लाभ नहीं मिलता बच्चे को।
0: आंगनबाड़ी है यहाँ पर?
1: आंगनबाड़ी है जो कि वार्ड नंबर 6 में है और डिलिया गांव में पड़ता है। यहाँ से आधा किलोमीटर जाना पड़ता है बच्चों को। इतना छोटा छोटा बच्चा हम लोग विदा नहीं कर पाते हैं और कुछ लाभ नहीं मिलता है। जो कि पोषाहार बहुत अच्छा खासा मिलता है आंगनबाड़ी में जो आता है, उसमें कुछ नहीं मिलता है हम लोग गाँव को। लड़का
0: इस गाँव में कितने घर होंगे लगभग?
1: इस गांव में 130-135 इसी तरह है।
0: मैंने 100 से ऊपर है?
1: 100 से ऊपर है।
0: एक व्यक्ति यहां पर बोला कि 70-75
1: ना
0: घर ही
1: एवरेज में 100 लेकर चलिए,
0: 100 के आसपास है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तो होना चाहिए था कि जहां बच्चों को पढ़ने की सुविधा होती, थोड़ा दूर जाना पड़ता है।
1: देखिए यहाँ पर जो है ना, 12 वार्ड का मुकर पंचायत गांव है और उसमें से 72 हाल वार्ड नंबर 6 का है, जिसमें कि डिलिया और रामगढ़ दोनों आता है। और डिलिया जो कि हम लोगों से छोटा गांव है, वहाँ पर हर कुछ का लाभ मिलता है। वहाँ पे यहाँ पर कुछ नहीं आता है, क्योंकि उसी वार्ड का ही गाँव है। और वहाँ पे जो सौर पैनल आया था, सौर ऊर्जा वाला, वार्डे वार्ड लगाने का, जो कि हम लोग गाँव में एक भी खम्भा नहीं गड़ा है, न सौर पैनल कुछ नहीं लगा है। वहाँ पे सारा व्यवस्था लग गया है।
0: ये सब जो बना हुआ है नाली,
1: सब 10 वर्ष हो गया, इस सब का 10 वर्ष, कोई रिपेयरिंग कोई कुछ नहीं। यहाँ पर पानी इतना लग जाता है,
0: किया हुआ सड़क,
1: 10 वर्ष हो गया इसका।
0: ये भी पहले का है?
1: हाँ, पहले का है।
0: मैंने इधर कुछ वर्षों
1: कुछ
0: में
1: नहीं हुआ है यहाँ पे।
0: आप गांव में अभी सब लोग कह रहे हैं कि पीने वाला पानी की व्यवस्था नहीं, अभी नल गल
1: पीने वाला पानी का रहा व्यवस्था। पीने वाला पानी से देखिए, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब की जो की कल का पानी वो भी खराब नहीं है। नल जो हमको नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन जो है
0: गली नाली,
1: ये गली नाली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने में गली में कुछ नहीं है। इसमें ईटा पहले का ही बिछा हुआ है, 10 वर्ष हो गया। और इधर देखिए, सब लोग गड्ढा में रहते हैं।
0: अच्छा, बच्चों को पढ़ने के लिए आपने बताया कि व्यवस्था बढ़िया है, विद्यालय भी
1: अच्छा
0: है,
1: विद्यालय ठीक
0: है, लिखाई भी ठीक ही होता है,
1: पढ़ाई लिखाई भी ठीक होता है।
0: पहले भी अपना विद्यालय को आप देखे होंगे, जब आप स्वयं पढ़ते होंगे उस समय से, तो इस समय बेहतर स्थिति है?
1: हाँ, बेहतर स्थिति है। हम लोग के समय में था कि पढ़ाई लिखाई ठीक होता था, लेकिन थोड़ा विद्यालय कैंपस था वहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं था। स्ट्रक्चर आजकल अब ठीक हो गया है।
0: अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, उसका लाभ आपको आपके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है?
1: जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब सब ठीक है।
0: अच्छा, आपके घर में राशन कार्ड का लाभ मिल रहा है?
1: राशन कार्ड का लाभ मिल रहा है अभी।
0: और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए?
1: आयुष्मान कार्ड सभी परिवार का है।
0: घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं जो 60 साल से ऊपर हैं?
1: वृद्धजन पापा जी हैं।
0: पेंशन योजना का लाभ मिलता है
1: जी?
0: कोई और योजना जैसे खेती गृहस्थी वाली जो योजना होती
1: किसान है, पीएम योजना मिलता है, केंद्र सरकार का चीज है, मिलता है।
0: मिल रहा है योजनाएं तो लगभग यहाँ बता रहे हैं अधिकांश लोगों को मिल ही रहा है।
1: जो सेंटर का है ना, स्टेट वाला, जो जनता के और सेंटर लेवल के, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में जो बीच होता है वो मिल जाता है, लेकिन जो मुखिया का, जो वार्ड का जो बीच में आता है, वो सब कुछ नहीं मिलता।
0: कोई दिक्कत नहीं होती योजनाओं में, लेकिन विकास के मामले में ये गांव आपका पिछड़ा हुआ।
1: जी जी,
0: इस पर ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ
0: जी, धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम रामगढ़ के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम रामगढ़ में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हो, या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisassaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान, स्वर एवं संकलन लाल बहादुर दुबे, प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

मदन राय के गाए इसी गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधार।

शुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: राजेश तिवारी रंजन डिगाई इसी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: 091 मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्राणी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थीं, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16 रूपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब हम तुमको देखे हैं रिछेला, जब जब हम तुमको

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई।

शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द

पर तो कई शब्द हो सकते, कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है।

0: दुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी, कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता के

हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ, ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया, उसकी तपिश में अब दर्द पिघल

ले लगा था। आसमान भी खामोश था क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: मेरा नहीं।
1: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
2: आएगी जरूर।
3: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
3: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
3: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
4: पल पल दिल के।
3: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
3: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
1: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख कतारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख

रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक

खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहां, ये कैसा दस्तूर यहां। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है।

बड़ा बेदर्द जहां है यहां इंसाफ कहां है, कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां, रोशनी कहां। ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी

0: दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जय भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो

अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हीं ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी, ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

0: कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान बिल्कुल आ गई, और मुस्कान के साथ साथ वक्त किया कि ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत देनी है।
1: समय दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में 2 सीमेंट इकाइयां लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की 2 बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें ना कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए।

0: आर्थिक अपराध इकाई ने जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान ज्ञात आय से 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी अभी जारी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए यह बात कही है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़ कर सहयोग की अपील भी की है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना कर रही हैं। रोहतास के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार 20 से 25 मई के बीच सासाराम के फजलगंज स्थित डायट सभागार में काउंसिलिंग की प्रक्रिया होगी। अररिया समेत राज्य के विभिन्न अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों और कैंप विद्यालयों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रोहतास नगर के सासाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास ड्यूटी के दौरान एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से यातायात सिपाही मुकेश कुमार घायल हो गए। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने आज अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण का दौरा किया। इस दौरान उत्साहित लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: एक नया बाब शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासती सरमायाकारी इंसेंटिव बोर्ड और SIPB की 67वीं मीटिंग में सीमेंट की दो बड़ी फैक्ट्रियां कायम करने को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर और राज्यसभा रुकन उपेंद्र कुशवाहा ने अपोजिशन पर जंगी सूरत हाल के पेश नजर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। पटना में सहाफियों से बातचीत करते हुए जनाब कुशवाहा ने कहा कि पूरी दुनिया में बदलते पस मंजर के सबब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। जनाब कुशवाहा ने कहा कि अपोजिशन को बेबुनियाद बातें न करके एक जिम्मेदार शहरी का रोल अदा करना चाहिए। इक्तसादी जराइम इकाई ने जमुई के झाझा में मामूर महकमा देही उमूर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के पटना और जमुई वाके मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आमदनी से जायद इमलाक के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान मालूम आमदनी से 2 करोड़ से जायद की इमलाक का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी अभी जारी है। आर्मी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि उसे दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ सरगर्मियां चलाना बंद करना होगा। जनाब द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद प्रोग्राम में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की सख्त पॉलिसी को सामने रखते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी रखता है तो उसे खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आज कौमी यौम डेंगू है। इस मौके पर सेहत और खानदानी फलाह के मरकजी वजीर JP नड्डा ने शहरियों से डेंगू की रोकथाम के तई बेदारी बढ़ाने और साफ सुथरा माहौल बनाए रखने की अपील की है। जनाब नड्डा ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हुकूमत बेहतर निगरानी, वसी टेस्टिंग, बेहतर इलाज की सहूलतों और वसी बेदारी मुहिम के तवस्सुत से डेंगू कंट्रोल की कोशिशों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में लोगों को पूरी यकजहती के साथ शामिल होना चाहिए। खलीज बंगाल में गर्दावी तूफान और आबो हवा में नमी के सबब रियासत के बेशतर खित्तों में प्री मानसून की सूरत हाल बनी हुई है। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत रियासत के शुमाल मगरब और जुनूब मगरब इलाकों में ज्यादातर मकामात पर बादल गरजने, बिजली गिरने और बारिश का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी इम्कान है। और अब एक अहम इत्तला।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: रियासत में आज वट सावित्री पूजा पूरे अकीदत एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस दिन खवातीन अपने शौहर की तवील उम्री और बेहतर सेहत के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे नामानिगारों ने बताया कि सुबह से ही खवातीन वट वृक्ष के करीब पूजा अर्चना कर रही हैं। रोहतास के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में 4th ग्रेड मुलाजमीन की तकरूरी के लिए काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई है। जिला एजुकेशन महकमा की एलानिया के मुताबिक 20 से 25 मई के दरमियान सहसराम के फजलगंज वाके डाइट कॉन्फ्रेंस हॉल में काउंसलिंग का अमल होगा। अररिया समेत रियासत के मुख्तलिफ अकलियती रहायशी स्कूलों और कैंप स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्त की तारीख में तोसी कर दी गई है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अब 30 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। रोहतास नगर के सहसराम थाना इलाके के तहत SP जैन कॉलेज मोड़ के करीब ड्यूटी के दौरान एक ट्रैक्टर की जद में आने से ट्रैफिक सिपाही मुकेश कुमार जख्मी हो गए। डेयरी मवेशी परवरी और माही वसाइल के वजीर नंदकिशोर राम ने आज अपने आबाई जिला मगरबी चंपारण का दौरा किया। इस दौरान पुरजोश लोगों ने जगह जगह उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है

0: 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
1: शुभ वाणी
0: लाभवाणी
1: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। पता फिर से बता रहे हैं www.crpf.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
1: शुभ वाणी
0: लाभवाणी
1: आकाशवाणी।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI, द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दो हजार 2025 में

0: करता है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यता
3: वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
4: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
4: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए

0: रास्ते खोले हैं।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य

0: अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ

0: शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव परमन ने।

चाचा जिंदाबाद। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको

0: ये कहाँ है?
1: कार्यक्रम मंच चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं

वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना। एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। इस गाने को सुनना चाहते हैं जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

तिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ। सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: ये नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना

0: बाण लौटा लिया।
1: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है। ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
1: हम कुलपति कर्ण के शिष्य है राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
1: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
1: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
1: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
1: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
1: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वह लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
3: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं?
3: तेरी तरह।
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
2: अरे ओह, अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओह, अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
5: हाँ,
3: वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
5: अरे बचाओ बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
6: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना।
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
6: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
4: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
6: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
2: ना तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जाओ।
7: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
3: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
4: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
6: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
3: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
6: और ही ढंग से?
4: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
2: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
6: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
3: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
4: बहुत मीठा है इसका गला,
3: करती रहती है सबका भला,
4: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
3: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
4: कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
6: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
3: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
6: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
4: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
6: फिर
4: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
0: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य।
6: किंतु
3: क्या आर्य?
6: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
3: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
2: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
3: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
4: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा।

0: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
0: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
0: ये लीजिए।
1: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?
0: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
0: मैं आभारी हूँ।
3: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान, सावधान।
0: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
3: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
1: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
0: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
2: चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
0: चलिए, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हां, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।

0: इन्हें तुरंत यहां भेज दो।
1: जो आज्ञा महाराज।
2: महाराज की जय हो।
0: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
3: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
0: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
3: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
0: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
1: आज्ञा महाराज।
0: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
1: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
0: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
1: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
0: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: माता का संदेश।
5: महाराज की जय हो।
0: क्या आदेश है माता का?
5: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
0: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
5: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव्य।
6: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
0: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
5: मैं तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
5: ठीक है, महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
0: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
5: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
5: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
5: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
5: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।

0: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से
1: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला। समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया। हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
2: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
1: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
2: वो कैसे?
1: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
2: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
1: मुझे एक उपाय सूझा है।
2: क्या?
1: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
2: फिर
1: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
2: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
1: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
2: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
2: क्या शकुंतला,
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
2: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
1: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा। हमारी मेहमान कौन है,

0: तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
0: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
1: जरूर।
0: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
1: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवाय।
0: अच्छा,
1: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
0: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
1: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
0: जी जी,
1: उनका नाम था।
0: हाँ हाँ।
1: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
0: जी।
1: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
0: जी जी जी।
1: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
0: हाँ हाँ।
1: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
0: हाँ।
1: तो आपके गले में नहीं आई।
0: हाँ।
1: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
0: हाँ।
1: ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं।
0: हाँ।
1: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
0: अन्ना जी मतलब
1: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
0: अच्छा।
1: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
0: हाँ।
1: नाम नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
0: जी, जी,
1: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
0: अच्छा।
1: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
0: Okay.
1: एक समय कालीपास सुर है तो,
0: हाँ,
1: खर्च के जो सुर होते हैं,
0: हाँ,
1: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना, ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल?
0: हाँ।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
0: जी जी,
1: ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
0: जी, जी। अन्ना जी को, यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
1: बहुत,
0: उसमें
1: बहुत।
0: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों के साथ,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। देखिए, आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, और नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ।
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना

0: हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
1: अच्छा
0: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
1: अच्छा,
0: तो अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
1: जी बिल्कुल,
0: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
1: अच्छा
0: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं किसी ने मुझे आके बताया

0: फिर जानी इसकी अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है,
0: हाँ,
1: ये ठपका दोष आता है
0: ऊपर,
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये से नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरक्षी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में
1: शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके

0: सकते हैं।
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी हाँ। ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के,
1: होते
0: लिए
1: थे कंपनी के लिए किसी हाँ, हाँ। कंपनी के लिए तो बहुत शो हुए।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी, जी।
1: बहुत सारी कंपनी उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे।
0: अच्छा,
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं।
1: हाँ,
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है, अपना स्टाइल होता है।
1: ये
0: तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया। सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और उनकी
1: सही बात
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं, हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी
0: जी,
1: कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: हाँ। अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है।
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए, नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा
0: जी,
1: इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा,
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचने गाने
0: जी, जी।
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा,
1: हाँ। तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास
0: जी।
1: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते एक आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था। तो नहीं, वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो। तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा। म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: तो श्रोताओं में
1: पुराने जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो
1: उनके दिमाग में
0: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टर टर टर, वो आना ही चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी,
0: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: मिलता नहीं है, सही बात।
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना
1: बजा करके
0: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज चार साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से तो बदली हो जाएगा
0: जी,
1: ना जी। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
0: बात।
1: तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियन।

0: एक संजय मराठे करके है तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल।
1: बिल्कुल।
0: तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मांडके बोलूंगी, विनय मांडके।
1: विनय मांडके जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी।
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे।
1: हाँ,
0: बहुत सारे जिंगल गाए उसने और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है स्टेज परफॉर्म होता है वो था। बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट तो उसमें कोरस था तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया मजा
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का भोली सूरत दिल के खोटे नए जमाने की ये नारी नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था हाथ में कंगन कान में बाली तो ये बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली कभी बोला ऐसा योगिता वाली कभी बोला ऐसा खोटी वाली कुछ भी मतलब वो ठीक था लोगों को भी मजा आता
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी,
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो में वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था। और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली। सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गांव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं आए। फिर मुझे उन्होंने पूछती है कि कसे भाव तुम्हें अशे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराएगा, पर गायला उभ रहा कस करता, मैं नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ,
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा लपिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना बहुत
1: शामिल
0: जरूरी
1: होना
0: होता
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुन।

0: Pawna, oh Pawna, Pawna, Pawna zara thamba, oh Pawna zara thamba, arghe padala piklai amba, alavai padala piklai am, oh nitvag padala piklai amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया
1: वाह वाह वा।
0: उनको भी शायद उतारा
1: जी प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया
0: करती थी
1: अपनी लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी.
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे,
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पेपाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके।
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: अब बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पर
1: हरी मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए आप।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष

0: गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। CBSE ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो स्केफे को हराया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन आप नित्य प्रति सुनते हैं हमारे केंद्र से 5:10 पर और 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवा वाणी।

संध्या 6 बजे प्रसारित आज की किसान वाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सदानंद राय की वार्ता, किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व, अलावा इसके मोटे अनाज हैं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और घर में पोषण वाटिका है जरूरी, इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी।

प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल आप सुनेंगे संध्या 7 बजे और 7:15 पर आप सुनेंगे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर और 7:45 पर सुनिएगा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद। जी हाँ, सूत्रधार होंगे लाल बहादुर सिंह और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का प्रसारण आप सुनते हैं 8:45 पर और रात्रि 9:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। साथ ही 9:15 पर गजलों की महफिल सजेगी, सुनना नहीं भूलिएगा। विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और रस रंग के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स हम आपके लिए पेश करेंगे रात्रि 10:00। सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट तराने आप सुनते हैं 10:30 पर और सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद। तो सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं भक्ति रचनाएं। लीजिए आज के वंदन कार्यक्रम में सबसे पहले पेश है अनूप जलोटा की गाई यह भक्ति रचना।

तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है, इसे चतुरंग कहते हैं। चार अंगों का इसमें समावेश है।

अनूप जलोटा की गाई भक्ति रचना भी आपने सुनी। हमारी अगली प्रस्तुति इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए सुनते हैं मयंक उपाध्याय की आवाज में ये भक्ति रचना।

और ये है भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन की अंतिम प्रस्तुति। गायक कलाकार हैं साधना सरगम।

वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। दोस्तों, विकास के रास्ते शांति से ही खुलते हैं। कहते हैं कि जहां शांति है वही तरक्की है, और ये बात शत प्रतिशत सही है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी काम करना हो तो भाई शांति तो चाहिए। शांति मतलब क्या? केवल खामोशी? ऐसा नहीं है कि शांति का मतलब बस एकदम शांत वातावरण, खामोश वातावरण, ऐसा नहीं है। शांति का मतलब हुआ कि चैन से, धैर्यपूर्वक, आसानी से। एक अंग्रेजी में कहावत है कि टू वेल बिगन इज हाफ डन, यानी यदि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी तरह हो जाती है, अच्छी शुरुआत यानी काम का आधा पूरा हो गया पक्का। तो अच्छी शुरुआत कब होगी? जब हम किसी भी काम के ऊपर, जो भी हमारा लक्ष्य है, उस पर हम जब गंभीरता से सोचेंगे, बारीकी से सोचेंगे, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के, जिसको बोलते हैं, बस जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखी, ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमारा लक्ष्य ही दिखना चाहिए। यह शांति का मतलब है। शांति से ही आती है समृद्धि। कई मीनिंग इसके हैं, कई मायने इसके हैं। शांति का मतलब यह भी हुआ कि हम मिलजुल करके सद्भाव बनाते हुए, सबका सहते हुए, सबका सुनते हुए आगे बढ़ें, और जो सबका सहता है वो आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उलझने का मतलब हुआ कि रफ्तार धीमी, तो कहीं भी रुके नहीं, हम चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए यह जरूरी है कि अपने ही धुन में हम लगे रहें। शांति से ही आती है तरक्की या समृद्धि, ये शत प्रतिशत बात सही है। आप उनकी भी जरा देख लीजिए जो बात बात पे उलझ जाते हैं, कहीं गलत

में पड़ जाते हैं, वो कहाँ आगे बढ़ पाते हैं, जाना कहीं और है, चले कहीं और जाते हैं। तो इसलिए आप विद्यार्थी हों, खिलाड़ी हों, नौकरी करने वाले हों, बागवानी करने वाले हों, जो कोई भी आप एनजीओ चला रहे हों, खूब चलाइए, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि हाँ भाई, शांति में ही समृद्धि है, शांति में ही तरक्की है। बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे देश के हुए, आप किसी की भी तस्वीर को देख लीजिए, अद्भुत शांति चेहरे पर। वर्धमान महावीर को आप देख लें, भगवान बुद्ध को आप देख लें, या अपने देवताओं को आप देखिए, देवी देवताओं को देखिए, बिल्कुल शांत चित्त, शांताकारम भुजंग शयनम। बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम सीख सकते हैं, वहां कोई हलचल नहीं है, चेहरे पर बिल्कुल स्थायित्व है, स्थिरता है। तो जो इस स्थिरता लाएगा, रखेगा अपने व्यवहारों में, सबका सम्मान करेगा, सबके लिए अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे व्यवहार का प्रयोग करेगा, वो भाई आगे बढ़ेगा। तो इसी से कहा गया है कि आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी काम को पसंद करते हो, चाहे आप जैसी भी रुचि रखते हो, अपने धुन में रहिए और शांति पूर्वक, का मतलब हुआ कि मन लगा करके, दिल दिमाग को एकाग्र कर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और रह गई बात की बार बार जो दोहराया जाता है कि भाई मौसम का ख्याल रखिएगा, देखिए दर्जे हरारत जो है यानी गर्मी तो भाई बढ़ते जा रही है, आज भी दिन काफ़ी गर्म महसूस हुआ है, हो सकता है कि कल आने वाला समय जो है वो थपेड़े वाला हो जाए, गर्म हवा के थपेड़े चले। तो ऐसी स्थिति में आप अपना पेट खाली नहीं रखें, ठंडा पानी, साफ पानी पिएं, सुपाच्य भोजन करें, तेल घी वाले चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, चूंकि अभी शादी का भी मौसम चल रहा है, तो शादी ब्याह के मौसम में तो पोहा पकवान पूड़ी तेल घी तो काफ़ी बहुतायत मात्रा में पड़ती है भोजन में। लेकिन हाँ, भोजन करते समय ध्यान रखिए भाई पेट किराए का नहीं है, अपना ही है पेट ना, कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, और सर जो है उसको बचाइए धूप से, आँखों को भी बचाइए धूप से। मौसम यदि खराब मिलता हो, आंधी पानी जैसा हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत तेजी से बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और जब भी आप चलिए सड़क पर, यातायात के नियमों का पालन करिए, क्योंकि उसी में हमारी यात्रा मंगलमय हो सकती है, जब हम यातायात के साधनों को और यातायात के नियमों को, दोनों को ही गंभीरता से लें और अपनी रफ्तार जो है उसको नियंत्रित रखें, सामने वाले का भी ख्याल करें। कहा जाता है कि जो गाड़ियां जो चलाते हैं, जो वाहन ड्राइव करते हैं, उनको तीन चीजों पर ध्यान रखना होता है, खुद को भी बचाना है, गाड़ी को भी बचाना है, सामने वाले को भी बचाना है। तो इस प्रकार से जब हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से समृद्धि आएगी। यहां भी शांति की ही जरूरत है, यदि आप सड़क पर चल रहे हो, ट्रैफिक जाम हो चाहे खाली हो, इतना तो ध्यान रखिए ना कि स्पीड ब्रेकर कहाँ है, कहाँ कहीं गड्ढा खाई कुछ बना हुआ है या कहीं ईंट पड़ा हुआ हो, अगर वहां आप जाएंगे तो उस पर गाड़ी हो सकता है कि स्लीप कर जाए, अनियंत्रित रफ्तार जब रहेगी तो भाई सारी काम गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए, शांति से आती है समृद्धि, ये एक बात हुई। और अब हम आगे बढ़ने के पहले एक गीत सुन लेते हैं।

तेजी से उभरते हुए कैरियर विकल्प शामिल हैं, और इस बात को और भी गहराई से जानने के लिए आप निश्चित रूप से इंटरनेट पे जाइए, अध्ययन कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज और, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ, इसमें जो आपने कभी यह भी सुना होगा कि भाई पैसा निकाल लिया, पैसा उड़ा दिया, गायब कर दिया, तो ये सब भी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि जब हम घर बैठे पैसा हम जमा किए हैं सासाराम में, निकाल लेते हैं एटीएम के माध्यम से मुंबई में, ये काम तो बड़ी सहज और बड़ी सुलभ हो गया है कि भाई बिना पैसा के गए, न पैसा भूलने का डर, न गिरने का भय, और हम निकाल लिए, अपना काम कर लिए, तो ये खुशी की बात है। लेकिन हाँ, सावधानी तो भाई होनी चाहिए ना। आप OTP, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं, OTP आप किसी दूसरे के साथ शेयर न करें, अपना पासवर्ड आप कभी किसी के साथ भी शेयर न करें, क्योंकि यही तो है जो कि आपके बीच और ये साइबर जो व्यवस्था है उसके बीच खड़ी का काम करता है, और इसी के लीक हो जाने से काम बिगड़ जाता है। तो साइबर क्राइम्स जो हैं आजकल हमेशा सुर्खियों में होते हैं, तो वहां हमारी जागरूकता बड़ी जरूरी है कि हम तेजी से समझें कि भाई हमको कैसे करना है। तो जब ATM लेकर आप जाइए कहीं ATM बूथ पर, तो वहां अपना पिन किसी को नहीं बताइए, किसी को नहीं बताइए, वो निजी चीज है, बेहद ही व्यक्तिगत चीज है। आप अपना पिन स्वयं जाने, किसी को नहीं, फैमिली में भी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानिए। और उससे क्या होगा ना कि आपको भरोसा आपका बना हुआ रहेगा, आप सुरक्षा कवच की तरह आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपने OTP को। तो चलिए, ये लघु चर्चा रही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसका दिन कल है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो कल भी बातें होंगी इस बिंदु पर, लेकिन फिलहाल हम आपको एक गीत सुनवा देते हैं। आइए सुन लेते हैं गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी हाँ, RBI कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए। अभी तुरंत हम लोग उसी की बात कर रहे थे कि OTP अपना दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, पासवर्ड दूसरे को नहीं बताना है, वो निजी चीजें हैं, व्यक्तिगत चीजें हैं। चलिए एक और बात कर लेते हैं, भारत औद्योगिक विकास योजना की। इसको वव्य योजना भी कहा जा रहा है, BHAVYA। जी हाँ, वव्य योजना यानी भारत औद्योगिक विकास योजना केंद्र सरकार की। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में 100 विश्व स्तरीय निवेश तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है और इस पर कुल 33,660 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इसकी कुछ जो मुख्य बातें हैं उसको भी हम लोग समझ लें। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब होता है कि निवेशकों को फैक्ट्री लगाने के पहले से तैयार बुनियादी ढांचा यानी सड़क, पानी, बिजली और पूर्व स्वीकृत सरकारी अनुमतियां मिलेंगी, जिससे वे बिना किसी देरी के तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे। यानी सरकार का प्रोत्साहन 100% है। वित्तीय सहायता सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इन पार्कों में कारखानों के शेड, टेस्टिंग लैब, वेयरहाउस और श्रमिकों के लिए आवास जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नोडल मंत्रालय की जहां तक बात है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ये कुछ चंद खास बातें हैं और विस्तार से जानने के लिए आप भव्य योजना को किसी साइट पर देखें, वहां से और भी आपको जानकारियां मिलेंगी। चलिए लगे हाथ एक और गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
3: There's something I wanna tell you, girl. I don't know what it is. I just can't. I just can't. You've done some kind of magic.

तो श्रोताओं, अभी आपने यह नगमा सुना और अब इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें आपसे विदा लेना चाहिए। तो आज के युवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुन रहे थे युवावाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में आप सब श्रोता भाई बहन के बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बा। और आपके साथ आज हम बने सुगिया बहन। सब श्रोता भाई बहन के प्रणाम। सुमन भाई रोवा के भी प्रणाम। हमारा साथ आज बने सुमन भाई हमने के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर।
1: सब किसान भाई किसान वाणी कार्यक्रम के सब श्रोता भाई लोगन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। सुगिया बहन रहो के नमस्कार। सुगिया बहन देखी ए घड़ी जौन घरे घर हमनी के देखल कि दोपहरिया में
0: सुबह में शाम में लोग घर घर घूमता
1: जनगणना खातिर कतना उत्साह रहे। हमनी के बात अभियो मान नहीं कहीं बतावे नहीं जा तो पूछल जला कि जिला के जनसंख्या कतना बा प्रखंड के कतना बा तो हमनी के कहे के पड़ला के 2011 के जनगणना के अनुसार हतना बा क्योंकि 21 में ना भइल
0: जी
1: तो अब 27
0: साल ना देखी कोविड महामारी के चलते कुछ न कुछ वजह रहल जौना के चलते कि हर 10 साल पर जनगणना होला और 2021 में ना हो पावल।

0: जनगणना अभी चल रहल बा।
1: एकर देखिए प्रकाशन हुई 2027 में, तो 2027 के जनगणना अभी हो रहल बा। और सुगिया बहिन, जोन अभी जितना हमनी के हैं डाटा आई, जितना संख्या आई, केकरा के हैं का बाटे, पक्का के घर बा,
0: पक्का के घर बा, कच्चा घर बा, मिट्टी के घर बा, लकड़ी के घास फूस के घर बा, ये सब चीज के देखी अभी सुमन भाई। एक तरह से अभी पूरा जन के गणना नहीं के होत, अभी मकान के गणना हो,
1: मकान के भी जब गणना हो रहल बा
0: जी, एकरा में बाद फिर फरवरी में हुई जनगणना पूरा, मतलब ये आधा तो एक तरह से मान के चले कि आधा अधूरा भारत के नक्शा खींचल जाता, फोटो एगो छोटा सा मान के चले कि पूरा भारत के फोटो लिहल जाता, और एकरा बाद फिर पूरा जनगणना हुई।
1: सुरिया बहिन, जब हमनी के कोनो घर मकान बनावे नहीं जा तो देखे ना कि पहले आदमी पाइलिंग करेला चारों ओर से,
0: ओकरा से पहले फोटो बनावेला कि हमरा कैसन घर बनावे
1: के, जब नीव जब रहला तो नीव जब माटी से भरा जाला तो ना दिखे, लेकिन पूरा बिल्डिंग वही पर टिकल रहेला। तो इहे जोन जनगणना बाद पहले हमनी के स्वगणना के नीजा, स्वगणना 30 अप्रैल तक के नीजा अपने से। अब घर घर आके लोग पूछता कि शौचालय बाकी ना घर में, माटी के घर बाकी,
0: पक्का के घर बा कि कच्चा ईंट के घर बा, मतलब ओमे देखी जनगणना जो अभी होता एमे 34 गो कॉलम बा, 34 गो सवाल हर घर जाके पूछल जाता। और हमनी के श्रोता भाई बहन के चाहे कि हमनी के एमे बढ़ चढ़ के भाग लही जा, और जो भी को मतलब सवाल करा था ओकरा के बाधा ना डाली जा। एक तरह से वो अधिकारी के रूप में आदमी जाता जेकरा के सरकार के द्वारा आई कार्ड मिलल बा, पहचान पत्र मिलल बा, ए काम के करे खातिर कि आप सरकार के आदमी हैं, भारत सरकार के आदमी हैं, और एकरा के मतलब वो आदमी के बाधा नहीं के पहुंचावे के,
1: बाधा तो नहीं के पहुंचावे के, जोन जानकारी बा तो ना के सही सही हमनी के देवे के बा, जोना से कि ई पता चले ना कि हमनी के का स्थिति बा, और एकरा से कोनो कोई पर कर नहीं खे लागे जात, ई एगो भ्रम के स्थिति मत होके कि हम अगर सही जानकारी दे देनी, हम बता देनी कि हमरा के पक्का के घर बा, गैस पर खाना बनता, हमरा के शौचालय बा, गाड़ी बा, तो हमरा पर सरकार
0: को। देखिए सुमन भाई, बहुत सारा तरह के सवाल आवेला जब आदमी फील्ड में उतरेलन, तब बहुत लोग बहुत तरह के वाहियात तरह के सवाल पूछेला, जो उनकी मतलब समय के एक तरह से बर्बादी करके कहीं एकरा के हमनी के ना करे के चाहे। ई केवल लोग के गिनती ना है, बल्कि देश के वास्तविक स्थिति के जाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनगणना से सरकार के ई जानकारी मिली कि देश में कितना लोग बा, उनकर शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य आवश्यकता की स्थिति का बा। यही आंकड़ा के आधार पर नया योजना बनावल जला और विकास कार्य के सही दिशा मिलेला। स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी जैसन सुविधा की योजना भी जनगणना के आंकड़ा पर ही निर्भर करेला।
1: यही तो यही से जरूरी बा कि हमनी के सही जानकारी दिहल जा। और दूसरा चीज देखी, एक तो जनगणना चल रहल बा, दूसरा अभी फार्मर रजिस्ट्री जो करा के किसान रजिस्ट्री कहे नहीं जाए, ओकर भी काम दूसरा चरण के चल रहल
0: बा,
1: 30 जून तक चली। तो जैसे रवा कहनी है कि जनगणना के आधार पर ही पूरा योजना तैयार होला, तो हमनी के फार्मर रजिस्ट्री जो किसान रजिस्ट्री बा ओकरे आधार पर किसान भाई लोग के सारा योजना के फायदा मिली। अगर जे किसान होके की सबसे बड़ा प्रमाण बा कि ओकर रजिस्ट्री होके के चाहिए, रजिस्ट्रीकरण होके के चाहिए, ओकर पंजीकरण होके के चाहिए, तो जब किसान रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ओकरा से किसान सम्मान निधि के लाभ मिली। कोई अगर यांत्रिकरण के कोई सामान खरीदतान, ट्रैक्टर खरीदतान, मोटर पंप खरीदतान, तो जो सरकार से जो निर्धारित अनुदान बा उहो किसाने भाई लोग के यही से मिली।
0: जी जी,
1: तो जितना किसान से संबंधित जितना योजना बा, खाद पानी सब कुछ, वो फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही अब मिली
0: पूरा होली।
1: तो ऐसे एकरा में भी बढ़ चढ़ के हमनी के भाग लेवे के चाहिए, और ये 30 जून तक हुई। तो ऐसे हमनी के अगर जो किसान भाई लोग नहीं करौले तो ओकरो के ही करा लेवे के चाहिए।
0: देखिए सही जानकारी जोन बा वो हमनी के राष्ट्र के मजबूत नींव है, और एक जानकारी हमनी के होके के चाहिए, सब कोई के होके के चाहिए। सुमन भाई, कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अब हमनी के एक नजर डालन जाओ आज के कार्यक्रम पर कि हमनी के कोना कोना विषय पर जानकारी लिहल जाए। देखिए देश विदेश के अंतर्गत कुछ समाचार हमनी के जानल जाए अब से तुरंत, और एकरा बाद फिर एक वार्ता के माध्यम से जानकारी लिहल जाए डॉक्टर SN राव के माध्यम से।

0: आज की विषय हुई केसीसी का महत्व। और एकरा बाद फिर हमनी के चर्चा पर अपना वापस आ जाए। एकरा में नया दौर नई बातें के अंतर्गत चर्चा के विषय हुई मोटे अनाज हैं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और घर में पोषण वाटिका है जरूरी, ए विषय पर भी हमनी के चर्चा कल जाए। एकरा बाद फिर मौसम के भी जानकारी लिहल जाए। और अब समय बा कि हमनी के कुछ समाचार जानल जाओ। रउआ पास देखो तनी कि रउआ खबर लेके बैठल बानी, बताई का का खबर लाइल बानी हमनी के श्रोता भाई बहन खातिर।
1: देखे सुगिया बहन, एघरी तक धान के अब बिया डाले के समय आ गिल बा। बिया डाले खातिर जोन हमनी के ये जिला के ये क्षेत्र के सबसे बड़ा जोन साधन है तन सोन नहर है
0: जी।
1: सोन नहर के दो भाग में कल गिल बा, एक पश्चिमी संयोजक नहर एक पूर्वी संयोजक नहर जोन के हमनी के इंद्रपुरी बराज से निकलेला। और यही से हमनी के 8 जिला के पटवन के व्यवस्था होला
0: जी।
1: जो नाम है कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, अरवल, जहानाबाद तक।
0: मतलब जहाँ जहाँ जहाँ तक सोन नदी के माध्यम से नहर निकल गई
1: जोन हमनी के से जोन जलाशय से जोन मैंने बराज बा इंद्रपुरी बराज एरिया से पूर्वी संयोजक नहर और पश्चिमी संयोजक नहर निकलल बा। तो जोन जल संसाधन विभाग बा यह साल खरीफ मौसम में पानी देवे खातिर, चूंकि धान के बिया सुगमता से सब किसान भाई लोग डाल दे, ये खातिर 1 जून से सोन नहरन में पानी छोड़ल जाए। और एकरा पहले हमनी के तैयारी कर लिया जाओ धान के बिया डाले के भी, तारा तैयारी हो जाए। पानी छूटी तो तुरंत बने हमनी के फिर बिया हुआ पड़ जाए समय से तो रोपनी भी शुरू हो जाए। और ये देखी धान के पटवन खातिर जल संसाधन विभाग लगातार पानी के व्यवस्था करेला और 31 अक्टूबर तक चली। और यह साल के व्यवस्था ये बा सुगिया बहन कि विभाग ये तैयारी के लिए बा कि जोन नहर के जोन अंतिम छोर बा जोना के टेल इंड कहल जाला वहीजा तक पानी पहुंचावे के व्यवस्था हो रहल बा। ओकरा खातिर लगातार युद्ध स्तर पर सोन नहरन के मरम्मत होता, कहीं मान ली तटबंध टूटल होके तो ओकरा पर काम हो रहल बा, मिट्टी के भराई होता, पिचिंग होता, अगर कहीं रिसाव बात ओकरो के बंद करे के व्यवस्था हो रहा बा।
0: ये सब से देखी होई का कि पानी व्यर्थ ना जाए,
1: पानी व्यर्थ ना जाए और अंतिम छोर तक पहुंच जाए। तो ये को ई हो गई। दूसरा बात बा कि अभी सबर मंसूरी जोन धान बा ई रोहतास जिला के ही देन बा। एकरा के वनस्पति अनुसंधान इकाई विक्रमगंज जोन बा, विक्रमगंज के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक बानी डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, तो उहे एकर ये बिया के जोन खोज के ले बानी और एकरा के बनौले बानी आ एकर नाम दिले बानी सबर मंसूरी। आ सबर मंसूरी के गुण ई बा कि एकर 1000 दाना के वजन हो 23 ग्राम
0: जी।
1: आई 140 से 145 दिन में तैयार हो जाई। एकरा के एकरा में बा कि एकर उत्पादन भी काफी अधिक बा। एकर 122 क्विंटल प्रति हेक्टेयर माने 4 बीघा में लगभग 122 क्विंटल एकर उत्पादन हुई। एकरा जोन बा एकर प्रभेद जोन बा एकरा में जीवाणु, झुलसा, झोंका या कंडुआ रोग के जोन बाटे ई एकरा में कम असर हुई, प्रतिरोधी बा। एकरा अलावा छेदक या भूरा पत्ती लिपटेक कीट के भी एकरा में सहनशीलता अधिक बा और एकर तना के मजबूती भी अधिक बा। तो यह रोग के भी ये सब कीटन के भी प्रभाव यह धान पर कम बा। और एकर किस्म के खास बा कि एकरा में 18 से 30 कल्ला हर मने बाली में निकली, हर पौधा में 18 से 30 को बाली निकली और प्रति बाली में जोन 300 से अधिक दाना रही। आ एकरा में भी 67% जोन चावल बा तो निकली, 1 क्विंटल में 67 किलो चावल हुई। एकर जोन बाटे धान के जोन माइलेज बा 24% बा। और जोन चावल बनी एकरा के जोन भात हमनी के बनावल जाए वो काफी मुलायम भुरभुरा हुई। तो इससे एकर खेती के मांग भी काफी बढ़ रहा बा और एकरा के भारत सरकार भी 97 क्विंटल बीज मंगले बा, जगह जगह से आ रहा बा कि भाई बीज हमरा के उपलब्ध करावल जाओ। तो हमनी के यह रोहतास जिला खातिर बहुत बड़ा उपलब्धि बा।
0: देखिए जितना रुआ सबर मंसूरी के बारे में बात बता देनी, इतना एकर गुण बता देनी कि लगा था कि जितना श्रोता भाई बहन हमने के आज का कार्यक्रम सुन रहा लो खबजा यही धान रोपे के तैयारी में लग गए लो खबजा कि अब की बार हमने के यह धान रोपल जाए।
1: हाँ तो एकर बहुत राज्यन से मांग आ रहा बा जो

0: कि झारखंड बा, मध्य प्रदेश बा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, पांडिचेरी तक से एकर, पुडुचेरी तक से एकर मांग आ रहल बा।
1: जी तो देखिए बहुत अच्छा रुआ जानकारी देनी, अब मतलब समाचार बतैनी। अब एकरा बाद हमनी के आवल जाओ कुछ जानकारी लेवे के डॉक्टर एसएन राव से। आज के वार्ता के विषय बा केसीसी का महत्व, तो जानल जाओ केसीसी का हो एकरा बारे में।
0: हाँ, तो हमनी के सुनल जाओ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो उनकी सबसे बड़ राहत है साहूकार लोग से, जे सूद पर जो किसान भाई लोग हमनी के पैसा लेते रहें जा, उखरा से बचाव खातिर सरकार के सबसे बड़ योजना जो रहे तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना बा, तो आई हमनी के सुनल जाओ।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड का आज कितना बड़ा महत्व है भारत के कृषि विकास में। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से अगस्त 1998 में RBI गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश एवं प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। राज्य में लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक परिवारों की संख्या लगभग 92% है। इसमें सीमांत श्रेणी के 79% एवं लघु श्रेणी के 13% किसान परिवार हैं। सीमांत श्रेणी में 79% किसानों में 73% कृषक के पास 0.5 हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि है, और औसत भूमि जो है वो 0.27 तो 0.27 हेक्टेयर है। पर्याप्त जोत के अभाव में उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो नई तकनीक को अपनाकर वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकें। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में 30 मार्च 2023 तक 7.35 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाता है। इसमें सरकार के द्वारा 8.85 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृत हैं। इसके साथ ही इस योजना का लाभ ज्यादा किसानों को मिले, इसके लिए सरकार के द्वारा घर घर अभियान भी चलाया जाता रहा है। यह विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है जो किसानों को फसल उपज, कृषि उपकरण खरीदने, खेती के लिए उपयुक्त सामग्री खरीदने एवं कृषि संबंधित खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना में फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण, सावधि ऋण शामिल हैं। केसीसी क्रेडिट धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु और अस्थायी विकलांगता के लिए 50,000 तक एवं जोखिमों के लिए 25,000 तक का कवर भी प्रदान करता है। प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा 2:1 के अनुपात से वहन किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे दो तरह का होता है, नगद ऋण कार्यशील पूंजी के लिए और सावधि ऋण पूंजीगत व्यय के लिए, जैसे मवेशियों की खरीद, पंप सेट, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ड्रिप इरीगेशन आदि के लिए दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा करने पर केसीसी योजना को स्मार्ट कार्ड से डेबिट कार्ड बनाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय संस्थाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं, उसी संस्तुतियों के आधार पर उसके मुख्य बातों को हम आपको बताना चाहेंगे। सीमांत कृषकों के लिए निर्धारित सामान्य आकलन के साथ फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड देय होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 वर्ष है, इसे 3 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। फसली ऋणों के लिए अलग से मार्जिन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्जिन वित्तमान में शामिल है। भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज सहायता और 3% पुनर्भुगतान करने का प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे उन्हें 4% प्रतिवर्ष की अत्यंत रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। समय से भुगतान के लिए ब्याज सहायता प्रोत्साहन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध होगा। 3 लाख की सीमा तक प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। पहली बार आहरण करते समय एक मुश्त प्रलेखन और इसके बाद किसान द्वारा सामान्य घोषणा उगाई गई प्रस्तावित फसलों के संबंध में दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड से जो मुख्य लाभ हैं, उसमें है अल्पावधि में फसली ऋण की आवश्यकता की पूर्ति होती है, कटाई उपरांत खर्च का वहन होता है, बाजार ऋण की अदायगी होती है, कठिन दिनों में परिवार की आवश्यकता की पूर्ति होती है, कृषि संबंधित उपकरण की मरम्मत, कृषि संबंधी अन्य कार्यों में आवश्यक खर्चे का वहन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादन, कृषि ऋण के समय से अदायगी पर प्रदेश और भारत सरकार द्वारा ब्याज दरों में कटौती का लाभ, ये सब उसके लाभ हैं केसीसी के। केसीसी की लिमिट निर्धारित करने के लिए बैंक निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हैं, जोत का आकार, आपके पास कितनी जमीन है, फसलों का प्रकार, आप कौन सी फसल उगाते हैं।

ऋण की आवश्यकता, आपको कितनी राशि की आवश्यकता है, सुरक्षा बैंक द्वारा आवश्यक सुरक्षा जैसे भूमि का दस्तावेज, बैंक अन्य कारकों पर भी विचार कर सकता है जैसे कि आपकी साख। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान बनाई गई है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। आप जिस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी वेबसाइट पर जाएं, विकल्पों की सूची में किसान क्रेडिट कार्ड चुनें, आवेदन करें। विकल्प पर क्लिक करने पर वेबसाइट आपको आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित कर देती है। फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और सबमिट कर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या भेजी जाएगी। यदि आप पात्र हैं तो बैंक आगे की प्रक्रिया के लिए 3-4 कार्य दिवस के भीतर आपसे संपर्क करेगा। आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताना चाहूंगा कि एक आवेदन फॉर्म होगा, 2 पासपोर्ट आकार के फोटो होंगे, पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि, पते का प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड पर मिलता है, राजस्व पदाधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि का स्वामित्व का प्रमाण, ये भी पेपर आवश्यक है, फसल पैटर्न, उगाई गई फसल क्षेत्रफल सहित आपको देना पड़ेगा, और 1.6 लाख से 3 लाख की ऋण सीमा के लिए सुरक्षा दस्तावेज जैसा लागू हो वो देना पड़ेगा, स्वीकृत के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज यदि बैंक मांगता है तो वो देना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, आवेदन पत्र भरना, केसीसी के लिए दस्तावेज जमा करना, बैंक द्वारा सत्यापन करना, ऋण की स्वीकृति करना, कार्ड वितरण करना, बैंक आपको केसीसी कार्ड जारी करेगा। आवेदन की स्थिति के आधार पर यह प्रक्रिया 2 से 4 सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाती है। धन्यवाद।

0: आवेदन की स्थिति के आधार पर यह प्रक्रिया 2 से 4 सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाती है। धन्यवाद।
1: देखिए अभी हमने के जानकारी लेते रही किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज के वार्ताकार रही डॉक्टर एस एन राव। बहुत अच्छा हमने के जानकारी देनी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। और अब ए वार्ता खातिर डॉक्टर एस एन राव के बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन भाई
2: बहुत धन्यवाद दिहल जाओ। यहाँ के बतौनी है कि खाली हमनी के केसीसी से खाली ऋणे नहीं मिलत, बल्कि अगर कोई तरह के घटना दुर्घटना हो जाता, अपंगता हो जाता, मौत हो जाता, तो का ओकरा से सरकार का सुविधा दे रहल बा, ये सब यहाँ के फरियाद बतौनी है। तो यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जाओ। आ सुगिया बहन, देखिए कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले कुछ संदेश बा
1: जी, सुन लेवे के संदेश।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, उही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित

0: करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: सुखिया बहन, अभी
1: जी
0: हमने के कुछ संदेश सुनत रहनी है जा, आ देखी रवा पहले का आगे सुनावा तनी तनी
1: देखिए,
0: बताए।
1: हमनी के आजकल सुमन भाई, आजकल के बच्चा के का कहल जाओ, बड़ आदमी के भी जीभ इतना चटपटा हो गई बा, आंख देखा था लाल हरा पीला, मतलब बाजार में खाए वाला चीज। और सरकार कहता कि मोटा अनाज हमनी के खाई, स्वास्थ्य खातिर भी बहुत जरूरी बा। सरकार का कहता हमनियों के दिमाग जाना था, लेकिन अब आंख के का कहल जाओ, अब यही में संतुलन बैठावे के बा।
0: सुगिया बहन देखी, आज के जौन युवा पीढ़ी बा, जे पढ़ल लिखल जौन लड़का घर से निकल गई बड़ा सन, वो अपना स्वास्थ्य के प्रति इतना सचेत बड़ा सन कि आज के समय में अगर अब मैदा के रोटी बना के पूड़ी बना के दे दी तो ना खाई सन। और एकर जौन श्रीजन के जौन मांग बा,
1: जी
0: ज्वार बाजरा मक्का
1: रागी सावा
0: रागी
1: कोदो और एक साथ साथ बा मड़ुआ, ये सब चीज बा।
0: तो हमनी के हैं जोन पहले से भी अनाज के उत्पादन होत रहे, और बीच के समय में ओकरा के आदमी कहलस कि ई मोट अनाज बा, एकरा के ना खाए के चाहिए। और एकर दुष्परिणाम इतना भइल कि पूरा घर के घर बीमारी के जगह हो गई, कौनो आदमी स्वस्थ ना रह। आ पहले मोट खा के या मोट पहन के आदमी एकदम 100-100 बरिस तक तंदुरुस्त रहत रहन।
1: जी देखिए, तंदुरुस्त रहन शारीरिक श्रम ज्यादा होत रहे, जितना यंत्रिकीकरण होत जा रहल बा उतना, मतलब शारीरिक रूप से आदमी कम काम करत रहन,
0: तो शरीर भी कम करत रहन, भोजन भी अगर शुद्ध नहीं खे तो एक नुकसान तो बा। अब भोजन शुद्ध करे खातिर श्री अन्न बा, मोटा अनाज बा, और एकरा खातिर सरकार अनुदान भी दे रहल बा।
1: देखिए इतने ना अनुदान तो मिलिए रहल बा, अच्छा अनुदान के बारे में पहले बता ली।
0: तो हमनी के जोन पहले बा कि देखिए मोटा अनाज जब एकरा में सिंचाई के कम साधन कम लगे के बा, कैसनो जमीन पर ये सब हो जाए, ज्वार बाजरा रागी जोन को सब मकई जौ, जौ के पहले रहे कि आदमी कुछ मने
1: सतुई
0: बनाव के घरी खात रह, आ बिना मने कतनो गर्मी पड़े जब बेटी बहन के अगर विदाई भी होके गौना उना में तो वो घरी जौ के भी कुछ एक जात रहे जोना के कि आदमी तरवा वरवा में लगा के लगावत रह कि कैसनो बुखार रही तो वो करा के।
1: और देखी एक साथे मोटा अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर, अनाज आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन सब पावल जाला। इस शरीर के ऊर्जा देवे के साथ साथ कई बीमारी के बचाव में भी मदद करेला।
0: तो देखी इतना बढ़िया चीज रवा बतौनी, और एकरा से फायदा ये भी
1: एकरा साथे साथे देखी ये मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, ये सब चीज के निवारण खातिर मतलब जरूरी बा, बहुत लाभकारी बा। सुमन भाई देखी हमनी के एकरा साथे साथे अपना घर में पोषण वाटिका भी लगावल जरूरी बा।
0: एकदम जरूरी बा। देखी पोषण वाटिका जोन हो, देखी पहले के देख जोन रहे सुगिया बहिन, कौनो ऐसा घर ना रहे जहाँ के बेअंगना के होके, हर घर में अंगना, हर घर के पास खौनी रहत रहे,
1: और में आदमी दुगो चारगो कुछ न कुछ लगा देत रहे,
0: सालों भर के सब्जी, सालों भर तरकारी बाजार से ना खरीद के आवत रहे, गांव में तमनी के झोरा में लेके तरकारी खरीद के ना आवत रहे।
1: जी
0: साग धनिया लहसुन तो मने समय से लग जात रहे। पोषण वाटिका भी वही चीज बा, पोषण वाटिका के अब नया नाम जो शहर में मिल गई बा, किचन गार्डन वगैरह के कहा जाता। और एकरा में ऐसा जगह पर लगावे के चाहिए जो उनकी खाली जगह होके, और वहीजा धूप आवे के साधन होके।
1: देखिए अगर अब तो हम घर घर भी ऐसा भी देखा जाता कि अंगना रहते नहीं खे, तो नहीं खे रह जो ना घर में अंगना है ही नहीं खे, वो घर में भी हमनी के पोषण वाटिका लगा सकत
0: हमनी के छत जोन बा, तो छत के हमनी के पोषण वाटिका के जगह बनावल जा सकेला। आ ओकर पहले
1: कोई बोड़ा में भी माटी उटी रख के, बोड़ा बोड़ा में भी माटी रख के ओकरा में
0: अगर बेड तैयार हो जाता नीचे करके। लेकिन बहुत सा घर बा जहाँ के ऐसे ही जमीन ऐसे ही खाली रहता, तो हमनी के चाहिए कि ओकरा में पालक, टमाटर, बैगन, धनिया, लहसुन, मरचा जोन भी बा, और एकरा में

0: खाद नहीं खे डाले के, जगह के जैविक खाद से अगर बनाई, केचुआ वाला खाद से या सड़ल गोबर डाल के अगर करी तो ओकर पहले लाभ बहुत ज्यादा हुई।
1: घर के आंगन में भी हमनी के पोषण वाटिका लगा सकतनी जा, एकरा से परिवार के ताजा सब्जी और पोषक सब्जी मिल जाला, पौष्टिकता मिल जाला। एकरा से सिर्फ ताजा सब्जी ही ना मिलेला सुमन भाई, साथे साथे ही हमनी के आर्थिक सहायता भी देवेला।
0: तो अब देखिए हमनी के वो मौसम के मिजाज पर भी अब चलत चलत देख लिया जा। तो आज अधिकतम जोन तापमान रहला तो 38 डिग्री सेल्सियस रहला, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, और सापेक्षिक आर्द्रता रहल 65%, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% रहल, और जोन हवा के जोन गति बा तौन 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलल है। और मौसम विभाग अभी कोई खास चेतावनी तो निखे दिले, लेकिन ये कहता कि 17 मई तक माने काल तक एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ में आंधी और हल्का वर्षा हो सकेला, और हमनी के जोन पूर्वानुमान बा कि 10 से 16 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से हवा भी पूर्वा हवा चल रही संभावना बा। तो देखिए अब कार्यक्रम के समय भी ओरा रहल बा, तो ये कार्यक्रम के हमनी के चल से पहले सब श्रोता भाई लोग से
1: सुगिया विदा लेबे के, आज सुगिया बहन के तरफ से सब श्रोता भाई बहन के नमस्कार, सुमन भाई रवा के भी नमस्कार।
0: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से नमस्कार, सुगिया बहन रवा के नमस्कार, और ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहनी है संतोष कुमार जी।

हमारे किसान भाई अभी अपना प्रसारण सुन रहे थे किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

श्रोताओं, अभी आपने रखवाला फिल्म का गीत सुना। जावेद अली की आवाज में प्यारेलाल यादव की शब्द रचना थी, सुरों में ढाला था धनंजय मिश्र ने। आइए सुन लेते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में लक्ष्मण शाहबादी जी का लिखा गीत। चित्रगुप्त जी का संगीत है और फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव।

लक्ष्मण शाहबादी जी का लिखा गीत आप अभी सुन रहे थे। आज उनकी जयंती भी है। हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में अनजान के लिखे गीत की तर्ज बनाई है चित्रगुप्त ने। फिल्म है बलम परदेसिया।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत। आज महान गीतकार लक्ष्मण शाहबादी जी की जयंती है। शाहबादी जी मुख्य रूप से आरा के रहने वाले थे, लेकिन कार्यस्थली सासाराम भी रही। कई कालजयी गीतों को आपने लिखा और स्वरबद्ध भी किया, और आज भी वो विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से गीत गूंजते हैं। चलिए हम आपको सुनवा देते हैं भैया दूज फिल्म से एक नगमा, जिसे गया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। लक्ष्मण शाहबादी जी की शब्द रचना है, चित्रगुप्त ने स्वर दिया है। लीजिए सुनिए।

0: सुन सोचतानी कि काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई
1: त रोकले के बा
0: रोकले त कोई नहीं खे बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी
1: हमरा से
0: तुहरा से तो बतावा
1: आकाशवाणी बाना हम सुनले बाने कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा
1: फायदा बा जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई
1: बहुत आसान बा हम बतावत बानी नंबर लिखी 8700014242
0: ओ 8700014242
1: हाँ
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242

0: 4-2 पर।
1: श्रोताओं, आज लक्ष्मण शाहबादी जी की जयंती है। शाहबादी जी के गीतों में मिट्टी की खुशबू है, भोजपुरी को भोजपुरी की तरह लिखा। यही कारण है कि इनके गीत असर करते हैं और याद हो जाते हैं सुनने वालों को। ऐसी कवित्व शब्दों में कि सुनते ही याद हो जाए, ये खूबी है। आइए एक और कालजयी रचना सुनते हैं, मोहम्मद रफी साहब की अमर आवाज में। फिल्म का नाम है धरती मैया। इस गीत के लिए शाहबादी जी के शब्द हैं और सुरों में ढाला चित्रगुप्त जी ने। लीजिए सुनिए।

0: आशा भोसले की राय और लक्ष्मण शाहबादी के लिखे इस गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: आयोजक है श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से शनिवार का दिन है, लेकिन आज एक बात कह देना चाहते हैं कि एक आध दो सप्ताह तक आप शनिवार को ये कार्यक्रम सुनेंगे ममता का आंचल, लेकिन बहुत जल्दी हम इसे संडे को शिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको समय बता दिया जाएगा कि किस वक्त आप ये कार्यक्रम सुन पाएंगे, रविवार के दिन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ममता का आंचल ये कार्यक्रम हम वैसे दंपतियों के लिए लेकर आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, और अब बच्चे का हो जाना उनके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बीमारी है, हाँ ये एक बीमारी है जो स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने से इसे ठीक किया जा सकता है। और हमें ऐसा लगता है इस कार्यक्रम को सुनकर बहुतों को फायदा हुआ है और लोग हाँ मस्ती में हैं, लोग हंसी खुशी इस कार्यक्रम का लाभ भी उठा रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चखियार हमारे साथ होती हैं इस कार्यक्रम में, IVF विशेषज्ञ हैं, और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी की तरफ से। जी हाँ, जो पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। आप चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके लिए भी विशेष रूप से एकदम अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए। डॉक्टर श्रद्धा चखियार हमारे साथ बैठी हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने भी बताया कि समाज या परिवार सिर्फ औरतों को दोष देता है, लेकिन समस्याएं पुरुष में भी होती हैं। आज का सवाल है, बहुत लोगों के दिल में ये होता है पर जुबान पर नहीं आ पाता है ना, तो इसे जुबान पर लाना है। डॉक्टर साहिबा, अगर पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म की कमी हो जाए हाँ, और वो अच्छा खाना शुरू कर दें, गुटखा सिगरेट तंबाकू छोड़ दें, तो क्या इनके रिपोर्ट में जो आ रहा था नो स्पर्म सीन या कम, तो ये जो है ठीक हो सकता है क्या?
3: सबसे पहले तो नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
2: नमस्कार।
3: आज का सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि पुरुष को अपना रिपोर्ट देख के ये समझ में आ रहा है कि कमी है और लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए। और वो पुरुष ये भी इस चीज के लिए भी तैयार है कि वो गुटखा जो भी
2: नशीली चीज है,
3: उसको बंद करना चाहते, जिसका बहुत बड़ा रोल है
2: जी
3: शुक्राणु की कमी को ठीक करने में।
2: हाँ।
3: लेकिन सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, पुरुष में शुक्राणु की कमी हम लोग कब कहते हैं? WHO ने अपना मापदंड दिया है
2: जी,
3: जिसमें ये कहा जाता है कि पुरुष में शुक्राणु की कमी है। शुक्राणु की कमी भी हो सकती है, शुक्राणु मिल भी हो सकता है
2: जी,
3: लेकिन कब ये अलार्मिंग है ये जानना जरूरी है। और ये मापदंड मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ
2: जी,
3: जो भी अपना जांच करा रहे हैं और एक अच्छे लैब में जांच करा रहे हैं।
2: हाँ।
3: तो शुक्राणु का जो टोटल संख्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, कम से कम 16 मिलियन पर ml होना चाहिए।
2: ओके।
3: उसकी जो चाल होनी चाहिए वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए।
2: शुक्राणु की चाल।
3: बिल्कुल। हाँ। और शुक्राणु जो का जो बनावट है वो कम से कम 4% बढ़िया शुक्राणु होना चाहिए, तभी उस पुरुष को अपने आप से बच्चा ठहर सकता है। अगर थोड़ी बहुत कमी है और आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं

0: तो उनकी समस्या जरूर ठीक हो सकती है।
1: कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। अगला सवाल आपकी तरफ से एकदम तैयार है, हम डॉक्टर श्रद्धा से पूछेंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से डॉक्टर श्रद्धा का नंबर, कहीं भी कोई भी हाँ सवाल होना, छोटा से छोटा सवाल भी तो आप पूछिए, 9162562266 9162562266 ये नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का, श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी, एक राष्ट्रीय स्तर का हाँ क्वालिटी IVF सेंटर है जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत विशेष सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल और भी है। बहुतों को पैसे की समस्या होती है, तब उसकी चिंता भी श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने दूर कर दी है। आप किस्तों में, टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं और ये टुकड़ा 24 महीने तक भी जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम आपके परिवार में खुशियां देखना चाहते हैं। पैसे के चलते अगर आप बच्चा या IVF नहीं करवा पा रहे हैं तो वो समस्याएं अब खत्म हो गई। आज ही बात कीजिए डॉक्टर श्रद्धा से, 9162562266 ये नंबर है। चलिए लौटते हैं कार्यक्रम में। बड़े बुजुर्गों आपके लिए भी कहा गया, हाँ इसलिए मैंने रुक के कहा है अलग से कि आप सुन लीजिए। डॉक्टर श्रद्धा आपने कहा कि लाइफ स्टाइल अगर ठीक हो जाए तो क्या शुक्राणु जो नील है या शुक्राणु जो कम हो गया है उसको वापस लाया जा सकता है क्या, और लाइफ स्टाइल ठीक करने का क्या मतलब है?
0: शुक्राणु अगर कम है तो लाइफ स्टाइल का रोल है, लेकिन शुक्राणु अगर नील है तब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही इलाज कराने का। शुक्राणु अगर कम है तो लाइफ स्टाइल का रोल है, उसमें अगर आपके लाइफस्टाइल में जो अभी हमने अभी तुरंत बात किया उन चीजों के बारे में कि तंबाकू गुटखा ये सब से दूर रहे, जो लोग को कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज थायराइड अगर ये सब है तो उसको कंट्रोल रखें। कभी कभी डायबिटीज भी एक कारण होता है जिससे शुक्राणु की संख्या घटती है। जो लोग जिम जाते हैं और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं या कुछ सेक्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड रहता है उन चीजों से दूर रहें, क्योंकि उससे भी शुक्राणु की संख्या घटती है। कुछ लोग मजबूरन या जिस कारण भी गर्म जगह पे काम करते हैं, ये भी अपने आप में एक कारण है जिससे शुक्राणु घटता है और मरता है। तो इन चीजों से दूर रहें, अच्छा खाना पीना खाएं, खुश रहें, रोज व्यायाम करें और इससे भी आपका जो शुक्राणु की संख्या बेहतर होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने ये सब कर लिया
1: जी।
0: तो उसके बाद और आपके अगर मतलब आपको पहले से पता था कि शुक्राणु की कमी है, आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, खाना पीना ठीक किया
1: जी।
0: तो आपको अपना दोबारा जो जांच कराना चाहिए शुक्राणु का वो 3 महीने बाद कराना चाहिए, क्योंकि 72 डेज से 80 डेज जो होता है उसमें एक नया जो होता है नया शुक्राणु का बैच आता है।
1: अच्छा।
0: तो हमें तभी पता चलेगा कि ये लाइफस्टाइल कितना काम किया, कारगर रहा और आप अपने आप से अपना इलाज कर पाएंगे।
1: वैसे दंपत्ति जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अब घर में नहीं बैठना है, चुप्पी तोड़ना है, चुप्पी टूटेगा तभी रास्ता निकलेगा। आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना है, बच्चा नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, IVF पद्धति से आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। और आपके घर आंगन में ये जो कार्यक्रम राजेश लेकर आ रहा है वो श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, जी हाँ, बिकना पहाड़ी मोड़ पटना में है, उनकी तरफ से एक अलग जगाने के लिए है ना। और हमारे समाज का हरेक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, घर का तो है ही, समाज के हरेक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ऐसे दंपत्ति को मोटिवेट करें कि डॉक्टर से मिलें, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और सफल हो जाएं बच्चा प्राप्त करने में। बहरहाल एक सवाल पूछते हैं, एक सहज जिज्ञासा है, आपने ये करो ये ना करो कह दिया आपने, थाली कैसे सजनी चाहिए, वो कौन सा हैंडसम फूड है जिसको खा करके हम तंदुरुस्त हो सकते हैं?
0: बिल्कुल, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है, ना केवल निसंतानता में, हर चीज में, चाहे आप डायबिटीज बोलिए, शुगर बोलिए, थायराइड बोलिए, मोटापा बोलिए, हर चीज। लेकिन जो लोग निसंतानता से ग्रसित हैं उनको ये बोला जाता है कि आपका जो थाली है उसमें हर रंग का खाना होना चाहिए। अगर सब्जी की ही बात करें, आप हर दिन हरी सब्जियां खाएं जैसे लौकी, भिंडी, परवल, पालक साग, मेथी,

0: गाजर, सहजन, प्रोटीन भी आपके डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि हर रोज आपके प्लेट में दाल आप जरूर डाल ले, राजमा, चना, अंडा, पनीर, जो लोग चिकन मछली खाते हैं वो ये भी खा सकते हैं। नट्स का भी बहुत रोल है
1: जी।
0: आपको अगर आप सक्षम है तो हर दिन आपको बादाम, अखरोट, कद्दू के दाने, तिल, ये सब जरूर सेवन करें
1: जी।
0: और चावल, दाल, रोटी, सब्जी तो खानी ही चाहिए,
1: वो तो एकदम रेगुलर।
0: लेकिन
1: है।
0: हर जो चीज से दूर रहना चाहिए वो है मैदा से दूर रहें, एक्सेसिव बिस्किट, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, ये सब से दूर रहें।
1: हाँ।
0: फल का सेवन अवश्य करें, अमरूद, आंवला, संतरा, मौसमी, ये सब का सेवन जरूर करें। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका भी रोल है ये शुक्राणु बढ़ाने में, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोक्यू, जिंक, सिलीनियम। और अच्छी बात है कि अभी जो भी मैंने फल, सब्जी और ये नट्स, बादाम का बात किया, उसमें ये सब अवेलेबल है। इसलिए आप अपना खाना समझकर खाइए, घर का खाना खाइए और जंक फूड से दूर रहिए, ताकि आपके शरीर में जितनी भी जो दिक्कत हो रही है खान पान के कारण वो ठीक हो सके और आपके शुक्राणु भी ठीक हो पाए।
1: पुरुषों, इसमें कहीं से लज्जित होने की बात नहीं है, कमी किसी में भी हो सकती है जिसको ठीक किया जा सकता है। और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं तो पति पत्नी दोनों जाएं, साथ में जाएं और एक दूसरे पर शंका की निगाह नहीं रखें, भरोसा रखें एक दूसरे पर, हेल्दी टाइम स्पेंड करें और डॉक्टर के पास जाके प्यार मोहब्बत से बात करें। जैसे डॉक्टर श्रद्धा चकहियार के पास आप जा सकते हैं, नंबर एक बार बता रहे हैं 9162562266, 9162562266। पूरी नींद भी ले। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, वैसे दंपत्ति भी बहुत सारे हैं जो अपने डाइट को भी उन्होंने ठीक किया है और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं तो उनका क्या?
0: देखिए, इसमें भी दो चीजें, अगर अभी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपना जांच करा लें। अगर आपका शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु बिल्कुल ठीक है तो फिर आप डाइट और सप्लीमेंट लेते रहिए, जब आपको बच्चा चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्राणु कम है और आप सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स के चक्कर में हैं, तो आप अपना जरूरी जो समय है वो खो रहे हैं, क्योंकि उम्र के साथ भी शुक्राणु की गुणवत्ता घटती है
1: जी।
0: तो अब जरूरी है आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना इलाज कराएं। देखिए, अभी तक तो हमने बात किया वैसे लोगों का जिनमें शुक्राणु की कमी है। एक मास ऑफ पीपल वो भी होता है जिन लोग में शुक्राणु निल होता है
1: जी, जी।
0: तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने संतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपका इलाज वो आपका जांच करेंगे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि शुक्राणु नहीं है लेकिन पोथी में शुक्राणु होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया कहते हैं, तो उनको भी टीसा, माइक्रो टीसा, इक्सी, ये सब जैसे टेक्निक है, IVF के ही एक मतलब हायर वो चीज है जिससे बच्चा हो सकता है
1: जी।
0: तो कहीं भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेल जो पुरुष निसंतानता है, आज उसका बहुत सारा इलाज हो चुका है, जिस तरह से औरत में निसंतानता का बहुत सारा इलाज है वैसे ही पुरुष निसंतानता का भी बहुत सारा इलाज है। लेकिन जरूरी है सही डॉक्टर से मिले, सही समय पे इलाज करें। अगर आप अपना सही समय, कीमती समय खो देते हैं तो फिर आपको अपने से बच्चा ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट फिकर नॉट, हाँ, चिंता नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, सारा समाधान हो जाएगा। ये एक छोटी सी बीमारी है, सही इलाज से आपकी पत्नी कंसीव कर लेंगी, बच्चा होगा घर के अंदर। डॉक्टर श्रद्धा, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, लेकिन बैठे रहिए, दो बातें हम कर लें। पैसे का कोई प्रॉब्लम है तो उनको बता दें कि अब आप सभी श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में इंस्टॉलमेंट पर टुकड़ों में हाँ पैसा दे सकते हैं, 24 बार में दे सकते हैं। आप बात करके तो देखिए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम चार कदम आपकी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे दंपत्ति अब चुप्पी तोड़ें। हाँ, किसी से हाँ शर्माने की बात नहीं है, शर्म की कोई बात ही नहीं है, एक बीमारी है जो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर का नंबर हम आपको बता रहे हैं 9162562266, 9162562266। राजेश निकलेगा आज के कार्यक्रम से।

0: ये बताते हुए कि हो सकता है अगले महीने से ये कार्यक्रम आप संडे को सुने। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, बुजुर्गों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बातचीत कीजिए, बैठा के मंत्रणा कीजिए। और ये जो नंबर है ना 9162562266, खुद से लगा के बात कर लीजिए ना, फिर उनको बता दीजिएगा। चलिए डॉक्टर श्रद्धा निकलते हैं आज के कार्यक्रम से, कहते हैं
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: ममता का आंचल, अभी आपने यह प्रायोजित कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, जिला प्रशासन रोहतास द्वारा जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे शीघ्र अपना किसान रजिस्ट्री पंजीकरण करें ताकि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से प्राप्त कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान रजिस्ट्री व्यवस्था किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को उर्वरक खरीद, फसल अधिप्राप्ति, फसल बीमा, कृषि ऋण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री होने से किसानों को उर्वरक खरीद प्रक्रिया में काफी सुविधा होगी। किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खाद बुकिंग कर सकेंगे तथा क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के जरिए अधिकृत दुकानों से आसानी से उर्वरक प्राप्त कर पाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकृत किसानों को पीएम किसान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे एवं शीघ्रता से प्राप्त होगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि और योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाने में किसान रजिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि धान, गेहूं एवं अन्य फसलों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसान रजिस्ट्री अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। पैक्स के माध्यम से फसल खरीद प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी तथा पंजीकृत किसानों को भुगतान भी तेजी से प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़ अथवा अन्य आपात स्थितियों में सही किसानों की पहचान कर शीघ्र ही सहायता एवं मुआवजा उपलब्ध कराने में किसान रजिस्ट्री सहायक होगी। इससे राहत वितरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसान रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को बैंक एवं सहकारी समितियों से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य कृषि ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। किसानों की पहचान और दस्तावेजी प्रक्रिया सरल होने से ऋण स्वीकृति में तेजी आएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान रजिस्ट्री व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। सरकारी सहायता वास्तविक किसानों तक पहुंचेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। वहीं कैमूर से समाहरणालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार कैमूर में उद्योग विभाग की विभिन्न ऋण योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु

विशेष कैंप का आयोजन किया गया। आज दिनांक 16/5/2026 को जिला उद्योग केंद्र कैमूर के कार्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य उद्योग विभाग की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे PMEGP, प्रधानमंत्री रोहतास सृजन कार्यक्रम और PMFME यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कृषि की स्वीकृति

और पीएमएफएमई यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कृषि की स्वीकृति एवं उनके त्वरित वितरण को सुनिश्चित करना था। बैठक व कैंप में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जिला अग्रणी प्रबंधक, सभी बैंकों के जिला समन्वयक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी तथा जिला संसाधन सेवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक शानदार नगमा।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज के संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक।

पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में दो सीमेंट इकाइयां लगाए जाने के स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की दो बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने अधिकारियों को भूमि परिमार्जन और सर्वे का काम समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सर्वे कार्य में अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो हमारे सेवाएं चल रही है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा किया और उन्होंने राजस्व विभाग के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है सभी कामों का निपटारा हो, और इसके लिए उन्होंने हमें विशेष करके बहुत सारे पदाधिकारी भी इसमें देने का काम किया है कि स्पेशल ड्राइव चलाया जाए और सर्वे के काम में तेजी लाया जाए, जिससे जो जमीन विवाद को लेकर के अपराध के मामले आते हैं उस अपराध पर रोक लगाया जा सके।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों, उद्यमियों और युवाओं से कृषि अवसंरचना कोष AIF से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। पटना में विभागीय बैठक के दौरान केंद्र की इस योजना की समीक्षा की गई। श्री सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना के तहत नवंबर 2025 तक 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 834 भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। शेखपुरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे मन से कार्य कर रही है।
2: बिहार के सर्वमान नेता नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने जो लकीर खींचा है उस लकीर को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथों में कमान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस लकीर को ये बड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा है। निश्चित रूप से बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, जो आशा है, उसको वर्तमान सरकार जरूर पूरा करेगी।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें छोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा

0: चाहिए।
1: यह जो विषय है जिसके कारण तेल का दाम बढ़ रहा है, यह विषय तो पूरी दुनिया से संबंधित है, इसमें भारत का बहुत कंट्रोल तो है नहीं। इसलिए ऐसे समय में लोगों को चाहिए, विपक्ष के भी जो भी नेता हैं, कि एक जिम्मेवार नागरिक की तरह परिचय दें, अनर्गल बात न करें।
0: प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के किशनगंज त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे में कार्यरत जंतु विज्ञान विषय की प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह 9वीं गिरफ्तारी है। आरोपी प्राध्यापक ने परीक्षा में संभावित प्रश्नों को विशेष कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को लिखवाया था। इनमें से अधिकांश सवाल 3 मई को आयोजित परीक्षा में पूछे गए थे। इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर आज कई आपत्तिजनक दस्तावेज लैपटॉप मोबाइल फोन और बैंक पासबुक जब्त किए हैं। जब्त सामग्रियों की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने आज जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 2 करोड़ रूपये अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान नकद समेत निवेश के कई कागजात बरामद किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए ये बात कही है।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज देश और प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़कर सहयोग की अपील भी की है। इधर जहानाबाद शेखपुरा और मुंगेर समेत विभिन्न जिला

0: कार्यालयों में आज जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मी और विभिन्न संस्थाओं के स्वयंसेवी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव में आज जीविका भवन का उद्घाटन किया। ये भवन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में बनाया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना के लिए जुटी रहीं। योजना और विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में कानून और सुशासन का राज है। श्री कुशवाहा रोहतास के शिवसागर में बुद्ध पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत प्रसुंडा बासा बहियार में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गवनडंगा थाना में पदस्थापित दारोगा को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दोनों पर एक महिला की हत्या मामले की जांच के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है। कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शेखपुरा पुलिस ने 7 मई को कसार थाना क्षेत्र के वर्षा गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि फरार अन्य 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा के राजगीर में कल से मलमास मेले का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि कल ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के ऋषि कुंड में 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला आज से शुरू हो गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। औरंगाबाद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा ने जल कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया है। सांसद अभय कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय की योजना भवन में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नूनिया टोला से पुलिस ने एक महिला को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थ

0: स्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: श्रोताओं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति जिले की हलचल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
3: भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। मई के अंत तक हल्के वाहनों का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। दरअसल पिछले दिनों विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब गंगा नदी में समा जाने से उत्तर बिहार का भागलपुर से सड़क संपर्क बाधित हो गया था। यह सेतु मुख्य रूप से भागलपुर को नवगछिया से जोड़ता है। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद श्री चौधरी ने ध्वस्त पुल का एरियल सर्वे कर जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने का निर्देश दिया। इधर घटना के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने के आरोप में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रोशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं राज्य के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सेतु पर मई के अंत तक हल्के वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभागीय निगरानी के साथ साथ आईआईटी इंजीनियरों की देखरेख में प्रमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग कराई जाएगी।
4: लेकिन हम भी अपने कार्यालय में 9 कमिश्नरी को बांटे और उसमें अलग अलग हर कमिश्नरी में एक इंजीनियर रहेगा और उसका पूरा रूपरेखा तैयार करेगा, उसमें कितने सड़क हैं, कितने पुल हैं, कब बना है, कब शुरू हुआ, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसका लाइफ है, इस सारी जानकारी हमारे कार्यालय से होगी।
3: इधर अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चंद्र के नेतृत्व में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज निर्माण कार्य में जुट गई है। उन्होंने बताया कि गिरे हुए स्लैब की जगह 34 मीटर, उत्तर दिशा के कमजोर स्लैब की जगह 12 मीटर तथा दक्षिण दिशा के कमजोर स्लैब की जगह 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल नाव और जेटी सेवा के माध्यम से लोगों का आवागमन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक घर घर जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ जनगणना और किसान पंजीकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। श्री चौधरी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार स्वर्गीय कृष्ण भूषण कुमार की धर्मपत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी देगी। इससे पूर्व पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी। दरअसल बीते दिनों नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने 12 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी रामधनी यादव को घटना के अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बीते दिनों भागलपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, इसमें 10,000 से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया तथा 6,81 करोड़ रुपए की राशि का सेटलमेंट हुआ। भागलपुर सहित राज्य के अन्य चयनित शहरों में मल्टीपल

0: फील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना अब धरातल पर उतरने लगी है। 22 अप्रैल को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भागलपुर सहित 11 शहरों के आसपास ग्रीन फील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भागलपुर में बनने वाली नई टाउनशिप का नाम विक्रमशिला रखा जाएगा। सरकार की इस पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में जिले से बिहपुर विधायक और भाजपा नेता इंजीनियर शैलेंद्र को, पथ निर्माण मंत्री तथा गोपालपुर विधायक और जदयू नेता शैलेश कुमार उस बुलो मंडल को ऊर्जा मंत्री बनाए जाने से जिले में खुशी का माहौल है।
1: अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद। प्रस्तुत करता है संतोष कुमार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज का फोरिन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, चलिए देखते हैं पहला कॉल हमारे किन श्रोता की है।
1: हेलो मनपसंद।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बोलिए कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं तकिया मणिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ सर।
1: जी जमील भाई, और
2: बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी कार्यक्रम बहुत बेहतरीन, आपकी प्रस्तुति होती है सर और लाजवाब, आपकी आवाज बिल्कुल अलग लोगों से हट के होती है, बड़ा मजा आता है कार्यक्रम सुन के सर।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ आजकल मौसम का क्या मिजाज है?
2: मौसम सर बहुत गर्मी हो गई है, लगभग 36-37 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर हो गया है सर।
1: तो ठीक है, गर्मी में थोड़ा एहतियात बरतिएगा।
2: जी जी जी बिल्कुल सर, और बिल्कुल, थोड़ा से अपना जो काम रहे वो सुबह शाम करो और थोड़ा से धूप से बचो।
1: जी
2: इसी में भलाई है सर।
1: जी
2: एक गाना आप सुनवा दीजिए सर।
1: जी जी जरूर सुनवा देंगे, कौन सा गाना?
2: गर्मी बहुत पड़ रही है, तो थोड़ा सा बारिश वाला गाना, ताकि गाना सुन के ही थोड़ा एहसास हो बारिश का। तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है, फिल्म का नाम है काली घटा, और इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ सर।
1: जी।
2: काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई आई आई आई तेरी याद आई। जी जी तरीके से गाना सर।
1: बहुत खूब जमील भाई, तो चलिए हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर यही गाना।

0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: आकाशी जी सर।
0: हाँ आकाशी से कौन बोल रहे हैं?
1: निसार जी सर।
0: निसार भाई क्या सुनना चाहते हैं?
1: एक डंकी फिल्म में गाना है उमाही है।
0: कौन सा गाना?
1: गाना का बोले उमाही उमाही।
0: उमाही अच्छा ठीक है। निसार भाई और सब क्या हालचाल है?
1: सब ठीक है सर, आपने बताइए।
0: हाँ यहाँ भी सब ठीक ठाक है। आकाशवाणी से आसाराम सुनते हैं?
1: जी सर।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: गाने में सच के बहाने हैं हम कसम ये बारी हो गया नमस्ते आकाश।
0: अच्छा अच्छा शायद आपको मालूम होगा कि गाने मैसेज के बहाने का नाम अब बदल गया है। आप मैसेज भेजते हैं? हाँ ई मन पसंद हो गया है। आप मैसेज भेजते हैं?
1: जी सर।
0: अच्छी बात है। तो चलिए निसार भाई आपको सुना रहे हैं आप ही के पसंद पर ये भी।

0: मैं पालनपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
1: जी जगदीश राय गर्ग जी पालनपुर से बोल रहे हैं?
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल पालनपुर से, जिला कांगड़ा।
1: हाँ जिला कांगड़ा से बोल रहे हैं, क्या करते हैं जगदीश जी?
0: सर जी मैं तो सेवा मुक्त हूँ जी, और बस आनंद लेते हैं जिंदगी का।
1: किस विभाग में थे?
0: सर मेरा अपना बिजनेस था, मेरी दवाइयों की दुकान थी, 40-45 साल मैंने दवाइयों की दुकान की, के बाद बेटा और बहू डॉक्टर बन गए हैं
1: अब। अच्छा अच्छा, अब बुढ़ापा का आनंद ले रहे हैं?
0: हम तो पूरा आनंद लेते हैं।
1: चलिए बहुत खुशी हुई, अच्छी बात है। आपके हिमाचल में अभी कैसा मौसम है?
0: सर मौसम बहुत खुशगवार मौसम चल रहा है आजकल, गर्मी का नामो निशानी है और आस पास की सुंदरता जो है वो मन मोह लेती है।
1: जी जी, आप बहुत खुश नसीब है कि ऐसे जगह पर रहते हैं। हम लोग तो इधर गर्मी झेल रहे हैं अभी।
0: जगदीश जी ने जगह जगह अलग अलग मौसम बनाए हैं, इधर तो लगभग मौसम हमें
1: जी जी भारत
0: महीने तीस दिन
1: भारत तो यही है, विविधता है।
0: हाँ, बहुत विविधता है।
1: आज हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मनहर उदास जी का जन्मदिन है तो उन्हीं का गाया हुआ अपने जमाने का बेहद मकबूल गीत फिल्म विश्वासी, साथ में सुमन कल्याणपुर जी भी हैं।
1: जी जी,
0: तो मैं उस गीत को इजाजत हो तो दो लाइनें गुनगुना के बता दूं।
1: जी गुनगुनाइए।
0: आप से हमको बिछड़े हुए, आप से हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया।
1: बहुत खूब जगदीश राय जी, चलिए हम आपको सुना रहे हैं।

0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तुलसीदास मातो ग्राम आरोली चांदी झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जोहर नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार तुलसी जी, झारखंड से आप बोल रहे हैं, और क्या हालचाल है?
1: हालचाल ठीक है सर। बीच बीच में बारिश हो रहा है, इधर गर्मी भी है, बारिश भी हो रहा है बीच बीच में।
0: हाँ इधर तो कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तो गर्मी हो गई है।
1: जी जी।
0: क्या करते हैं?
1: मैं किसान हूँ सर।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसान हैं?
1: बैंगन का खेती की है सर।
0: किस चीज की खेती की है?
1: बैंगन की।
0: बैंगन की खेती। अभी आपके यहाँ बैंगन का क्या

0: बाजार भाव है, निकल रहे हैं कि नहीं बैगन?
1: हाँ सर, निकल रहा है।
0: अभी आपके यहाँ
1: 25 रुपया में बिक रहा है सर, किलो।
0: 25 रुपए किलो बिक रहा है?
1: जी जी।
0: चलिए, अच्छी बात है। तुलसीदास जी, आज क्या सुनना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में?
1: लव स्टोरी फिल्म का कोई भी एक सुमधुर गाना सुना दीजिएगा सर।
0: लव स्टोरी?
1: जी सर। परिवार के कुछ सदस्यों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ जी, लीजिए।
1: श्रीमती कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहनी महतो, संगीता महतो, संतोषी महतो, दिनबंधु महतो, एक सुमधुर गाना।
0: अच्छा, कोई भी गाना?
1: जी जी।
0: तो ठीक है, तुलसीदास महतो जी, हम आपको सुना रहे हैं आपके परिवार के साथ ये गीत।

0: मंटो
1: सर। हाँ, कौन बोल रही है? सौम्या जी, कहाँ से बोल रही है?
0: सासाराम कंपनी से,
1: कंपनी सराय सासाराम से बोल रही है। क्या करती है साधना जी? अच्छा सौम्या जी, क्या करती है?
0: अभी मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ।
1: 7 कक्षा की छात्रा है, पढ़ने में मन लगता है? चलिए, कौन सा विषय आपको, गणित कठिन तो नहीं लगता है ना?
0: क्या
1: गणित विषय आपको कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है।
1: चलिए, अच्छी बात है। रेडियो सुनती है?
0: हाँ, कभी कभी।

0: अभी सुनती हैं, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: भाइयों के बारे बारे भैया।
0: हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गाना है।
1: हाँ,
0: तो चलिए सौम्या जी, हम आपको सुना रहे हैं यही।

0: हेलो मन पदम सर,
1: बोलिए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: हम गुड्डू शर्मा बात कर रहे हैं।
1: गुड्डू शर्मा जी?
0: जी हाँ, अम्बा धमनी से, जिला रंगा बिहार।
1: अम्बा से बोल रहे हैं गुड्डू शर्मा जी?
0: जी।
1: क्या करते हैं गुड्डू जी?
0: सर दुकान उकान चलाते हैं।
1: किस चीज का दुकान है आपकी?
0: एक किराना दुकान चलाते हैं और खसर ब्लाइंड है नाक से हम।
1: अच्छा अच्छा, तो दुकान कैसे चला लेते हैं?
0: खर्चा नया नोट तो दिक्कत होता है, लेकिन मैं ऐसे मतलब किसी तरह से मैं चला लेते हैं।
1: अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: गीत सर सुनना है, आप बात कर लीजिए। एक महिला बात करना चाहती है हमको, छुटकी वही अपना पसंद बताएगी ना।
1: अच्छा ठीक है, कराइए बात।
0: हेलो सर।
1: हाँ हेलो, कौन बोल रही हैं?
0: नाम सर वनिता कुमारी, औरंगाबाद से।
1: वनिता?
0: हाँ
1: हाँ हाँ। वनिता जी क्या सुनना चाहती हैं?
0: हाँ सर, राजा हिंदुस्तानी की गाना सुनना चाहती हूँ, कोई भी सुना दीजिए।
1: तो ठीक है वनिता जी, हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं जयप्रकाश भारती स्टेशन रोड से बोल रहा हूँ।
0: जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, क्या करते हैं जयप्रकाश जी?
1: मैं जनरल स्टोर की दुकान करता हूँ और आकाशवाणी सासाराम के प्रोग्रामों को भी सुनता रहता हूँ।
0: हमारे आकाशवाणी सासाराम में कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी एप्लीकेशन के द्वारा सुनता हूँ। जी फिलहाल तो फरमाइशी प्रोग्राम सुनता हूँ, चाहे पत्र वाला हो चाहे हेलो फरमाइश हो।
0: अच्छा, तो चलिए आपको धन्यवाद। आज क्या सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म मन की आंखें का गीत है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत वो मैं बता रहा हूँ सर। चला भी आओ जाने वाले, आजा तेरी याद सताए।
0: ये बहुत खूबसूरत गीत है
1: और ये गीत मैं कुछ अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
0: हाँ, लीजिए नाम अपने दोस्तों का।
1: मैं यहाँ जौनपुर में जनील अहमद साहब, वहाँ से मैं मोहसिन अंसारी, जावेद अख्तर, परवेज अहमद, दिशा में सेवा लॉर्ड, भानु में सब बत्ती मिनट गोपाल पांडे।
0: जयप्रकाश जी अपने दोस्तों के साथ सुनिए मन किया के फिल्म का।

0: मन पसंद
1: जी। हाँ सर प्रणाम।
0: हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं?
1: गुड्डू कुमार चंदौली से, वाराणसी।
0: क्या हालचाल है?
1: ठीक है सर।
0: आकाशवाणी सासाराम सुनते हैं आप?
1: जी जी, आकाशवाणी सासाराम सुनते हैं, बहुत बढ़िया से सुनते हैं, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है, सारे उद्घोषक जो है अच्छे हैं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भी बहुत दिलदार है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम, जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम जितना भी आता है तो कभी कभी सुन ही लेते हैं हम।
0: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या करते हैं?
1: यही खेती बाड़ी का काम है, थोड़ा बहुत चलता रहता है।
0: चलिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश तो है ही, अभी कौन सा फसल लगा हुआ है आपके खेतों में?
1: अभी तो कुछ नहीं है सर, धान गेहूँ की खेती होता है तो धान गेहूँ तो कटिए गया, भूसा वूसा बनिया गया, तो अभी तो खाली रहेगा ना तो।
0: अच्छा, अब मैंने धान की खेती के लिए तैयारी होगी। तो चंदौली में कुछ दर्शनीय स्थल है क्या?
1: चंदौली में कोई खास दर्शनीय स्थल नहीं है, वो तो वाराणसी में है, लेकिन यही अब तो पहले बहुत छोटा सा जी टी रोड के किनारा था अपना, आज तो कुछ विकास हुआ है, तो कुछ हॉस्पिटल वगैरह सब बन गए हैं, लेकिन वही कोई दर्शनीय स्थल नहीं है।
0: अच्छा, गुड्डू कुमार जी आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाजीराव मस्ताना करके कोई फिल्म का नाम है, और गाना हम आप ही रेडियो स्टेशन से एक बार सुने थे रात्रि में, याद कर लिया है शायद की तरह, यही गाने का बोल है।
0: जी जी,
1: बाजीराव मस्ताना का है या फिल्म का नाम कन्फर्म नहीं है, आप कन्फर्म होंगे
0: तो ठीक है। गुड्डू कुमार जी, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो मनपसंद, कौन बोल रहे हैं?
0: लाल बहादुर जी बोल रहे हैं, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं लाल बहादुर सिंह ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: आप विक्रमगंज से बोल रहे हैं, मोहम्मद।
1: खैर लाइक भाई, क्या हालचाल है?
0: बहुत बढ़िया है सर, अपना सुनाइए। घर भी बहुत सही है।
1: हाँ इधर भी सब ठीक ठाक है,
0: चलना मुश्किल हो रहा है रोड पर।
1: गर्मी तो बढ़ गई है, थोड़ा एहतियात बरतिएगा।
0: उम्र हो गया सर,
1: विशेष रूप से आपको एहतियात बरतना होगा। यही हाँ हाँ, बिना जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले धूप में। अच्छा चलिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना?
0: मैं सुनना चाहता हूँ सर, राखना फिल्म का गाना है, अपनी सलाहों की इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। यही गाना हम सुनना चाहते हैं, मोहम्मद रफी का गाना है, राखना फिल्म है और शंकर जय सिंह का लिरिक है।
1: फिल्म का नाम थोड़ा स्पष्ट बोलिए।
0: वासना।
1: वासना ठीक है, लाइक भाई हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम हेलो मनपसंद अब समाप्त होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो मनपसंद के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए आप हमें हमारे इस फोन नंबर पर रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0618422110। श्रोताओं से एक आग्रह कि जिन श्रोताओं का कॉल आज शामिल हुआ है वे कृपया अगली बार कॉल न करें ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हैलो मन पसंद। सूत्रधार थे लाल बहादुर सिंह, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर

0: रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।

महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

अभी आप लोक गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे, लोकधारा। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। महफिल के तहत पेश है चंद गजलें और गीत।

नक्शलालपुरी की लिखी रचना प्रस्तुत कर रहे थे भूपेंद्र सिंह। और अब आइए सुनते हैं दर्शन सिंह जी महाराज का लिखा गीत गुलाम अली की आवाज में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन

0: कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

0: directa selfie, le le re.
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विक्की कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विक्की कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विक्की कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज घायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थीं भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग लिए सुनिए इस कार्यक्रम में कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

इस समय आप सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति रचना।

अनूप जलोटा और अनुराधा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये रचना। और इन्हीं रचनाओं के साथ ही एल्बम सॉन्ग्स का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी।

जी हाँ श्रोताओं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। सही सुना आपने। सबसे पहले आप सबको हमारा सप्रेम नमस्कार। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है।

अनुमान लगाइए कि वो घड़ियां कैसी होती होंगी जब किसी को देखते ही मोहब्बत हो जाए। जी हाँ, इसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही देखते मोहब्बत। और वो कहते हैं ना कि जब किसी से दिल लग जाए तो लगता ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन हाँ हुआ तो जरूर, असर तो है। इससे तो वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, इससे तो वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, ये रोशनी खींच कर लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे।

जब हम चले तो अपना भी साया न साथ दे, जब तुम चलो जहान चले बहार चले।

शायद किसी रोज तुम समझ पाओ इस दिल की बेकरारी और तुम्हारी आंखों के काजल का कोई बहुत गहरा रिश्ता है।

तो श्रोताओं, आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं क्रमशः आर पार, सफर, धूल का फूल, सीआईडी और किस्मत। इन्हीं गीतों के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी चाहता है आज्ञा, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर।

प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आप 7:30 पर सुनते हैं नमस्ते रोहतास और 8:20 पर पसंद आपकी कार्यक्रम सुनिएगा। 8 बजे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात आप सुनेंगे। नौ बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका और 10:05 पर हमारे नन्हे श्रोता अपना प्रसारण सुनेंगे अंकुर। दस बजकर तीस मिनट पर लोक माधुरी कार्यक्रम सुनिएगा और 10:45 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। सांध्यकालीन प्रसारण में कल आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण 5:30 पर और संध्या 6 बजे सुनिएगा गांव घर सांझ गीत कार्यक्रम 6:30 पर। एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। जी हां, कल न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस संभावित है। हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और हवा में नमी 26% रहने की संभावना है। तो यह था कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान और ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। जी हां, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारत

0: भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
0: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology